0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं।
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज जुमेरात है, रबीउल अव्वल की 20 और सितंबर की 3 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने सेहत के शोबे में इस्लाहात का अमल तेज करने की हिदायत की है। इक्तिसादी उमूर के वजीर ने तरक्याती शराकत दारों के साथ करीबी तआवुन से हुकूमत की जामे मालियाती इस्लाहात को उजागर किया है। वजीर तवानाई ने कहा है कि महंगी बिजली पर इन्हिसार कम करने के लिए शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फरोग दिया जा रहा है। यूनेस्को ने पाकिस्तानी वर्से और सकाफत के तहफ्फुज़ के लिए तआवुन जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम ने तालीमी और तरक्याती मौके के जरिए फलस्तीनी नौजवानों की मदद के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। और 19 साल से कम उम्र ख़वातीन खिलाड़ियों के नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कल कराची में स्टार्स और चैलेंजर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को सेहत के शोबे में इस्लाहात का अमल तेज करने की हिदायत की है। वो इस्लामाबाद में वज़ारत कौमी सेहत और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आतिशज़दगी के वाक़े से मुतल्लिक हंगामी इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर आज़म को सेहत के शोबे से मुतल्लिक मसाइल के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिसमें पिम्स में आतिशज़दगी के वाक़े की जारी तहकीकात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब अफसरान के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने हुकाम को पिम्स में सेहत और इलाज की सहूलियात बेहतर बनाने और तमाम जरूरी हिफाजती इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत दोनों को हिदायत की कि वो हर दूसरे दिन पिम्स में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं और अस्पताल की बेहतरी के इकदामात पर अमल दरामद की निगरानी करें। मनसूबा बंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने आवाम को बेहतर खिदमात की फराहमी और बुनियादी सतह पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए बल्दियाती निज़ाम में इस्लाहात पर जोर दिया है। एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम को बेहतर और मौसर खिदमात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जामे इस्लाहात मुतारिफ कराने की जरूरत है। वफाकी वजीर ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर एक जामे बल्दियाती निज़ाम वज़ा करने पर गौर करना चाहिए, जिसके जरिए शहरियों को उनकी दहलीज पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। इक्तिसादी उमूर के वजीर आहद चीमा ने अहम तरक्याती तरजीहात के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के पाकिस्तान के साथ 6 दहाइयों से जायद अरसे पर मुहित तआवुन को सराहा है। वो इस्लामाबाद में एशियाई तरक्याती बैंक के जनूबी वस्ती और मगरबी एशियाई उमूर के नायब सदर यिंगमिंग योंग से गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वजीर ने IMF, एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक समेत अहम तरक्याती शराकत दारों के साथ करीबी तआवुन से हुकूमत की जानिब से की गई जामे मालियाती इस्लाहात को उजागर किया। एशियाई तरक्याती बैंक के नायब सदर ने मालियाती दर्जाबंदी के बैन अक्वामी इदारों की जानिब से पाकिस्तान की दर्जाबंदी में बेहतरी का खैर मकदम किया और माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि हुकूमत ने बिजली के शोबे में निजकारी के जरिए गैर मौसर कारकर्दगी में कमी लाने और नतीजा खेज इस्लाहात मुतारिफ कराने पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। एक वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि हुकूमत ने बिजली के शोबे में निजकारी के जरिए गैर मौसर कारकर्दगी में कमी लाने और नतीजा खेज

0: और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, खिता पोटोहार, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बास बड़े शहरों का दर्जा हरारत, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 24 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 30, कराची 27, पिशावर 29, कोयटा 22, गिलगित 20 और मरीज 16 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लिए महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मौसम जुजवी तौर पर अबरालूद रहने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि लह और पुलवामा में मतला जुजवी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 26, लह 8, पुलवामा और शुपियां 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तजियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk पर।
1: लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: 101 FM।
3: तूफानी बारिश में निकासी आब मुयस्सर ना होने की सूरत में शहरों में सैलाब आने का खतरा रहता है। अवामुल नास और मुतलका जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि बारिशों से पहले पानी की उम्दा निकासी, सफाई और सेवरेज का अच्छा इंतजाम कर लें। कूड़ा करकट नालों में फेंकने से गुरेज करें। सैलाब के दौरान बिजली के खम्भों और कच्ची दीवारों से दूर रहें। बिजली और गैस के मेन कनेक्शन मुनक़ता कर दें। कीमती साजो सामान को अलहदा किसी ऊपरी जगह पर मुंतकिल कर दें। अशिया खुर्दोनोश, साफ पीने का पानी, मोबाइल फोन और रेडियो का इंतजाम रखें। किसी भी हंगामी सूरतेहाल में रेस्क्यू महकमात से रजू करें और मुतलका नंबर्स पर राब्ता करें। आफात से महफूज पाकिस्तान, हम सब की मंजिल। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
4: दिस इज FM 101।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
6: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM मनोरम रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: 101 FM.
4: मूसलाधार बारिश और شدید ज़ालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है तेज और مسلسل बारिशों से पानी छतों घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का سبب बन सकता है इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें दीवारों छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो شدید बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके
3: 101
5: सूरत में शहरों में सैलाब आने का खतरा रहता है अवामुल नास और मुतलका जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि बारिशों से पहले पानी की उम्दा निकासी सफाई और सीवरेज का अच्छा इंतजाम कर लें कूड़ा करकट नालों में फेंकने से गुरेज करें सैलाब के दौरान बिजली के खंभों और कच्ची दीवारों से दूर रहें बिजली और गैस के मेन कनेक्शन मुनक़ता कर दें कीमती साजो सामान को अलहदा किसी ऊपरी जगह पर मुंतकिल कर दें अशिया खुर्दोनोश साफ पीने का पानी मोबाइल फोन और रेडियो का इंतजाम रखें किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू मात से रजू करें और मुतलका नंबर्स पर رابطہ करें आफात से महफूज पाकिस्तान हम सब की मंजिल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी
6: दिस इज एफएम 101
7: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट पन्नू एबटाबाद And Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
8: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा

0: This is FM 101.
1: सोना लाया है NPS, तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: I love FM 101।
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: saving roll.
1: Thank you.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is FM 101.
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

से महके मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर नजरसानी करो जरा सी कदर करो मेरी कला की।

This is FM 101.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: दिस इज FM 101।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is FM 101.1.
1: सोना लाया है NPS, तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101.1.

This is FM 101.

मुंतजर पर दिल को तुम करना छोटा जरा भी नहीं। ये मेरी इल्तजा है मशवरा ही नहीं। तुझे लगता है तुझे सब पता है मेरी जान। तू कितनी खूबसूरत तुझे ये पता ही नहीं। तू जो

0: 1 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Asma Hafiz. First, the headlines. Prime Minister has approved establishment of Trade Facilitation Board aimed at addressing all non-tariff issues related to cross-border trade. Pakistan has issued a $3 billion euro bond. Security forces have successfully thwarted an infiltration attempt by Fitna al-Khawarij along Pak-Afghan border, killing 15 terrorists. The United Nations General Assembly has unanimously adopted a Pakistan-led first-ever resolution on access to assistive technology.
1: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें दीवारों छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके
2: 101 FM तूफानी बारिश में निकासी आब मुयस्सर ना होने की सूरत में शहरों में सैलाब आने का खतरा रहता है अवामुल नास और मुतलका जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि बारिशों से पहले पानी की उम्दा निकासी सफाई और सेवरेज का अच्छा इंतजाम कर लें कूड़ा करकट नालों में फेंकने से गुरेज करें सैलाब के दौरान बिजली के खम्भों और कच्ची दीवारों से दूर रहें बिजली और गैस के मेन कनेक्शन मुनक़ता कर दें कीमती साजो सामान को अलहदा किसी ऊपरी जगह पर मुंतकिल कर दें अशिया खुर्दोनोश साफ पीने का पानी मोबाइल फोन और रेडियो का इंतजाम रखें किसी भी हंगामी सूरतेहाल में रेस्क्यू महकमात से रजू करें और मुतलका नंबर्स पर राबता करें आफात से महफूज पाकिस्तान हम सब की मंजिल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी
3: दिस इज FM 101
4: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव FM 101
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान
3: दिस इज FM 101
6: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने सरहद पार तिजारत से मुतालिक तमाम नॉन टैरिफ मसाइल के हल के लिए तिजारती सहूलत बोर्ड के क़याम की मंजूरी दे दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों को जदीद तालीम और हुनर के मौके फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बुरोएकार ला रही है। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ज़्यादा शफाफ और मुस्तैद बनाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर इत्तलात ने सोशल मीडिया के जरिए हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के फ़रोग के लिए एक कमेटी कायम करने की तजवीज़ दी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: 12 बजे तक। और आज है जी 3 सितंबर 2026 का सन, और आपका मेरा साथ रहेगा 12 बजे तक। एंड टुडे इज थर्सडे, वेदर इज गुड। सफोकेटिंग होता है समटाइम्स, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे लाहौर में बादल बरसते हैं, कहीं पे नहीं बरसते, बिल्कुल मिजाज की तरह से हैं, कहीं पे हंसते हैं लोग और कहीं पे रोते हैं, कहीं पे उदास होते हैं, और यही खूबसूरती है इस खूबसूरत से ज़िंदगी के निज़ाम की, जहाँ पे हंसने वाले आपको चेहरे नज़र आते हैं, वही हंसी के पीछे कहीं उदासी नज़र आती है, और कहीं पे जेन्युइन हंसी नज़र आती है, ओरिजिनल हंसी, हकीकतन हंसती हुई, मुस्कुराती हुई हंसी। एक गमज़दा हंसी होती है, एक मुस्कुराती हुई हंसी होती है, एक आंसू होता है जो गम का आंसू है, एक आंसू होता है जो खुशी का आंसू होता है। आंसुओं की भी बड़ी इकसाम है, जिस तरह से इंसानों की किस्में हैं, इसी तरह से बादलों की भी इकसाम है। कुछ आते हैं बरस के चले जाते हैं, कुछ ऐवें चाका ही करा जाते हैं, मतलब आते हैं और चले जाते हैं। हम खुश होते हैं, आ गया ये आज बरस के जाएगा, और मैं मेरे जैसे लोग मुंतज़र रहते हैं आज बारिश होगी, मैं नहा लूँगा। लेकिन इन द सेम टाइम एक थॉट ये भी जहन में होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, सैलाब हैं, अल्लाह उन लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और उनके घर को अपने अमान में रखे, उनके माल मवेशी ज़रिया माश सब बहाल रहे। क्योंकि अगर आप लोग खुश हैं तो मैं अपनी अगर बात करूं, आई रियली फील गुड व्हेन यू गाइज आर ओके, व्हेन यू गाइज आर हैप्पी। इफ़ यू गाइज आर नॉट हैप्पी, मैं चाहे आपको जानता हूं या नहीं जानता, चाहे मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, कोई वास्ता है या नहीं है, आई डोंट फील हैप्पी फॉर यू व्हेन यू आर नॉट हैप्पी। अगर आप खुश हैं तो ट्रस्ट मी, आई फील हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। और दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे हम वतन खुश हैं। और इससे बड़ी और क्या ही खुशनसीबी हो सकती है कि आपकी जहाँ पे निगाह जाए आपको लोग खुश नज़र आए। और ये चाहते हम सब हैं, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि करने में थोड़ी सी एफर्ट लगती है, और वो एफर्ट क्या है, वो दो मीठे बोल हैं जो कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ कभी कभी बोल देता हूँ, यकीन करें, वरना मैं समझता हूँ मैं भी अक्सर कड़वे किस्म के अल्फाज ही बोलता हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। वो आज कोई हेडफोन भी नहीं ला के देना तुसी मैनू, मतलब मुझे आरजे वाली फील आनी चाहिए यार ब्रो, ये है। हाँ जी, एक्चुअली हमारे यहाँ पे स्टूडियो में लाइट नहीं थी, और तो मुझे यही था कि शायद आज मैं आपके साथ रबते में ना आ पाऊँ, लेकिन फिर पता चला लाइट आ गई है। जब मुझे ये पता चला लाइट आ गई है तो मैं कह चलो आज तो मेरा देर नाल जाना भी कवर हो गया, दिस इज़ नॉट माय फॉल्ट, आज तो लाइट ही नहीं थी तो लाइट आती गई है और मैं भी यहाँ पे नमदार हो गया। तो बात कर रहा था मैं दो मीठे बोलों पे, दो मीठे बोल सुना बहुत है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है, मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आके बात करते हैं मीठे बोल, मीठे बोल, बोलता कोई भी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बोलते, क्या वजह है, मतलब व्हाट यू थिंक, हम क्यों नहीं बोलते। मुझे भी शायद यही लगता है कि वो बोलने की वजह से ना पैसे लगते हैं, कोई बिल शिल आ जाता है, या शायद कोई उस पर भी टैक्स टुक्स तो नहीं आपको फील होता, समटाइम आई फील उस पर भी शायद टैक्स लगा हुआ है मेरी ज़ात पे, जो मैंने खुद साख्ता किस्म का लगाया हुआ है कि यार अगर मैं किसी के साथ मीठा बोला ना तो इसे मेरी ज़ात के बारे में अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा। मैं अपनी ज़ात का अच्छा इंप्रेशन क्यों दूंगा, एवं ये मेरी ज़ात का अच्छा इंप्रेशन ले जाएगा, खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा, मेरी तारीफ़ करेगा, तारीफ़ करेगा, दो चार नेकियाँ मेरी लिखी जाएंगी, दो चार गुनाह झड़ जाएंगे, है ना। अब ऑफर होता तो साथ में और दो चार जुमले ऐड कर देता तंज मजाक के लिए आई एम नॉट ऑफ है। सो हमें ये चाहिए कि हम वो करें, वो रवैया इख्तियार करें जो चाहते हैं कि हमारे साथ इख्तियार किया जाए। कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं है, लेकिन यही लंबी चौड़ी तमहीद है। हमारे साथ इस वक्त रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियो में मौजूद है जनाब मोहसिन, कैसे हैं आप?
1: अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आज मुझे नज़र आ रही है आपके लबो लहजे में इतना वक्त गुजारने के बाद, क्या वजह है?
1: सर बस आपसे ही सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ठीक भी

0: हो जाएंगे
1: बस। मुझे ठीक लोग नहीं पसंद।
0: अच्छा।
1: दो मीठे बोल बोलते रहे बाकी ठीक है, बाकी और
0: बाकी ठीक है,
1: बाकी ठीक है। मेरे अंदर क्या है या आपके अंदर क्या है इससे मेरी जात को तो फर्क पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं,
0: किसी को फर्क नहीं पड़ेगा।
1: मुझे मेरी नीयत पे जाना जाएगा।
0: एग्जैक्टली।
1: नीयत का इजहार मेरे आमाल से होगा।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बोला।
1: ख्यालात पे उलझ जाना कोई अकलमंदी नहीं। आजकल मसला ये है, हमारे पास सेकंड थॉट के नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि दूसरा ख्याल। मेरे अंदर ये ख्याल आया, मेरे अंदर ये बात चली, मेरे अंदर ऐसे हुआ, उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें सोच रहते हैं, फिर वो बन जाती है ओवर थिंकिंग।
0: बिल्कुल।
1: तो इससे अवॉइड आप कर सकते हैं, आप और मैं, हम ये तहिया करें कि हम मीठी गुफ्तगू करना सीखेंगे।
0: बिल्कुल ठीक।
1: मीठी छुरी नहीं बनना।
0: मीठी छुरी नहीं। हाँ, मीठी गुफ्तगू।
1: हाँ, मीठी छुरी नहीं बनना। वो क्या है, क्या कहते हैं वो, क्या है, छुरी और मुंह में राम राम, हाथ में छुरी और मुंह में राम राम, कुछ इसी तरह करके।
0: हाँ जी, वो है वो मुहावरा।
1: सो अल्लाह का शुक्र अदा करें यार, अल्लाह ने आपको मुझे ये ज़बान दी है। किसी को कुछ भी कहना है, कहने के लिए मीठे अंदाज में गुफ्तगू करना सीखें, और इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। ये सिर्फ बातें मैं आपको जो यहाँ पे आके करता हूँ ना, बेसिकली मैं अपने आप को शर्म दिला रहा होता हूँ। या आपको नहीं कह रहा था ये, मैं अपने आप के लिए,
0: अपने आप के लिए ये सारी,
1: मैं अपने आप को शर्म दिला रहा होता हूँ, थोड़ा शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। शर्म कर लो यार, तुम कब बड़े हो गए, कब तुम्हें अकल आई। उम्र के आदादो शुमार से बड़े नहीं होते यार, अकल के मायार से बड़े होते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: वक्त हो चुका है 10:27, आज 3 सितंबर है, 3 सितंबर है 2026 का सन है। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और मैं हूँ, मेरे साथ हैं जी मोहसिन, आरजे मोहसिन, एंड वी टॉक अबाउट कलर, साइकोलॉजी ऑफ कलर। सो मौजू कुछ भी हो उसे आप कतई नजर, जो दिल में आता है आप बात कर सकते हैं। मेरा कैनवस बहुत बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा है। और मेरी लाइव स्ट्रीम भी है जी, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। RJ_DOX डॉक्स लिखेंगे फेसबुक पे, सर्च करेंगे, आपको मेरी लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी। डू हिट मी विद योर कमेंट्स, एंड मुझे SMS कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, अगर आप इंटरनेट नहीं यूज़ करते या आप तक एक्सेस नहीं है, तो आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, 101 लिखना, और उसको स्पेस देने के बाद अपना पैगाम लिखना, भेज देना है 4471। ठीक है जी। और इसके अलावा कॉल करने के लिए 04211100101 उस पर कॉल कर सकते हैं। मैडम सलमा का मैसेज आया, अचानक से गायब हुआ। फरा जी ने सलाम किया, जुहान मुगल ने सबसे पहला मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच। और जो मैंने बातें की उसी के हवाले से, खूबसूरत सा कलाम, कलाम में इल्म बाय सरमत कदीर। अच्छा, कुछ बातें महज कलाम या गाने या धुने नहीं होती, हकीकत होती,
0: हकीकत होती,
1: वो धुन के अंदाज में आप तक पहुँचती। सही बात। थैंक यू फिजा जी, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। सलमा राशिद साहिबा कह रही है आप कपड़े, मेरी अकल का व्यार मुझे नहीं लगता बड़ा।

0: हाय, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया।
1: हाय हाय हाय,
0: तहजीब हाफी साहब,
1: वाह।
0: तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा, मत पूछ।
1: ओह,
0: उसने जिसको भी जाने का कहा बैठ गया।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत है।
0: मतलब किसी अंदाज में जाने का कहा होगा, कितने प्यारे अंदाज में,
1: कितने प्यारे अंदाज में कहा गया। मीठे बोल,
0: सानू भी कोई एवं गुस्से में बंदा कहे कि अच्छा, उसने जिसको भी जाने का कहा बैठ गया। अपना लड़ना भी मोहब्बत है तुम्हें इल्म नहीं।
1: अपना लड़ना भी मोहब्बत है तुम्हें इल्म
0: नहीं। लड़ना भी मोहब्बत है तुम्हें इल्म नहीं। चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया।
1: आए हाय, क्या बात
0: है ना। अच्छा,
1: जबरदस्त।
0: ऐसे होता नहीं है बाहर,
1: नहीं होता
0: है ना।
1: ये बड़ा रेयर होता है।
0: उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया।
1: क्या बात है।
0: मतलब पोजेसिवनेस है ही नहीं, सेल्फलेस मोहब्बत है। बस में जाना में नशिस्ते नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया
1: बैठ गया।
0: तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या
1: बैठ गया।
0: इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया।
1: बहुत खूबसूरत,
0: क्या बात है। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:37, आज 3 सितंबर 2026 का सिन है, और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स एंड दा। थैंक यू वेरी मच। फिजा राजपूत पूछती हैं कौन सा कलर है। अरबाब अली सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। आरजे डॉक्स वाइब्स ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। रिजवान सदीक साहब तशरीफ लाए हैं, सलाम किया जी, वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन आपको भी सलाम किया
1: जी, वालेकुम अस्सलाम।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर योर सलाम। एंड आज हम किस कलर पे बात करेंगे मोहसिन?
1: सर आज हम बात करने वाले हैं ऑरेंज कलर पे।
0: ऑरेंज। ओह माय गॉड, आज हम नारंगी रंग पे बात करेंगे। ओके, आई वांट यू टू टर्न ऑफ दीज लाइट्स।
1: ओके,
0: आई डोंट वांट दीज लाइट्स। आप मुझे कॉल कर सकते हैं जी, 042। ओहो, अच्छा जी, कॉल ही आ गई, मैंने गुस्सा ही कर गया कोई। 042111001001। यस, इज गुड। ये वाली भी ऑफ कर दें। यस, दैट्स गुड। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई नहीं, और अगर आपकी कॉल नहीं मिलती, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं अपने मोबाइल से। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, 101 लिखें, स्पेस ने अपना नाम और अपना पैगाम लिखें, और इसको भेज दें 4471 पे। ऑरेंज कलर पे आज बात करेंगे। एंड वंस अगेन, मैं ये समझता हूँ मेरी ये जिम्मेदारी है इखलाकी तौर पर भी, कि आपको ये आगाह करता रहूँ, जो भी चीज़ रिसर्च से जिसका ताल्लुक हो ना, तहकीकी अमल से जो चीज़ गुजर के सामने आती है, वो कभी भी हर्फ़े आखिर नहीं होती। तो जो भी बात यहाँ पे आपको साइकोलॉजी ऑफ कलर पे बात करें, या साइकोलॉजी ऑफ, पहले किस पे हमने बात की थी, जर्टिकल साइंस पे बात की थी हमने, साइकोलॉजी ऑफ जर्टिकल साइंस पे बात की है। कुछ भी करें, रिसर्च बेस्ड होते हैं, जिसमें ये कोशिश करते हैं ज़्यादातर लोगों के रवैये किस तरह के हैं, उस तरह से फिर इस पे नतीजे निकाल कर बात की जाती है। तो मैं यहाँ पे जो बात आपसे शेयर करता हूँ, वो इसमें
1: हर्फ़ आखिर नहीं,
0: गारंटी नहीं है कि वो हर्फ़ आखिर हो और वही लफ्ज़ ठीक हो, लेकिन कुछ ना कुछ मिलता,
1: कुछ ना कुछ है,
0: पाया जाता,
1: कुछ ना कुछ तो है।
0: आपकी चॉइसेस आपकी ज़ात को रिफ्लेक्ट करते हैं।
1: बिल्कुल ऐसे ही है।
0: आप सोचते क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, आपका रहना सहना, आपका पिराहन, आपका पहनना, आपका लिबास को ज़ेब-ए-तन करना, आपके जूतों की चॉइसेस, आपके हेयर स्टाइल, और कुछ भी है,
1: कुछ भी,
0: आपकी सारी चीज़ें जो है इस तरह की, जो दूसरों को नज़र आए, आपकी ज़ात के बारे में बड़ा लाउडली बोलती हैं। इसी तरह से रंगों की चॉइसेस भी आपकी ज़ात के बारे में बहुत कुछ बोलती हैं। अच्छा 4471 पे मैसेज आया, रात को 12 बजे रेडियो स्टेशन गेट्स क्लोज, सो इवन इफ यू हैव प्लेड द जालिमा सॉन्ग बाय हसन रहीम आई डिडंट गेट दैट, सो प्लीज कैन यू प्ले दैट अगेन माई सेल्फ आयशा फॉर आरजे डॉक्स. ओके गारद आयशा, आई विल डेफिनेटली प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू. फायदा हैदराबाद से, मड़ा थैंक यू आज टाइम पे आई हो, सिस्टर भी साथ सुन रही है. मड़ा फायदा तुम कैसा है, तुम ठीक है? आज देखो मैं टाइम पे आई हूँ, और मैं टाइम पे आई हूँ. मड़ा तुम नहीं टाइम पे आया यार, तुम्हारा सिस्टर भी आज शो सुनता है. अब मुझे ये बताओ ना जरा फायदा, मड़ा तुम्हारा सिस्टर का कौन सा फेवरेट कलर है? व्हाट अ ग्लो है ना, ऐसे ग्लो तब आता है जब सारी लाइट ऑफ कर दी जाए, रिंग लाइट आपके मुंह पे फोकस हो जाए और आपके मुंह पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हो, फिर ग्लो आता है. ग्लो तो जो ये ग्लो देखना चाहते हैं,
1: ग्लो की डेफिनेशन आप
0: वो अपने फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, आर जे स्पेस डी ओ एक्स डॉक्स लिखें एंड यू विल सी मी द एंड यू कैन डेफिनेटली हिट मी विद योर कमेंट्स देयर. और माजबी ने हमें ज्वाइन किया, वालेकुम अस्सलाम जी. सैयद मोहम्मद अली जिया सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम. फाइन एंड एनर्जेटिक टुडे एज वेल, यस आई एम फाइन बिकॉज़ आई डिडंट स्लीप. अगर मैं सो जाता फिर शायद एनर्जी का लेवल लो होता, सोने का टाइम नहीं मिला. ओके इदरीस चित्राली, हेलो सर, हेलो हाउ आर यू ब्रो, आर यू वेल? अच्छा जी सलाम है मोहब्बत चांद, वालेकुम अस्सलाम चंदा, कैसी हो? खुद को डीग्रेड मत किया करे. मैं डीग्रेड नहीं करता, मुझे जो लगता है मैं वो बात करता हूँ. डीग्रेड होता है कि जो ग्रेड से भी नीचे जाने की कोशिश करें, ऐसे नहीं है. अली रजा, आरजे अली रजा ट्यून्ड इन, बड़ी गल है. आप जैसा अच्छा, आप जैसा प्यारा, आप जैसा मीठा बोल कोई नहीं बोलता, मैं सिर्फ माइक पे बोलता हूँ. आपको लगता है आपको मोबाइल में मीठा हो के आता है, अदरवाइज नहीं बोलता मैं, मुझे नहीं लगता. अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, बहुत खुशी है.
1: आमीन
0: आमीन जी. चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे, ढेरे मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया. मरीना बिलाल ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच जी. अच्छा जी, माय फेवरेट कलर इज ब्लू. मड़ा कितनी दफा तुम बताया गया यार, तुमने कितनी दफा हमसे पूछना है ब्लू कलर के बारे में, खुदा का नाम लो. एनीवेज तमाम दर जितने भी फौजी हमारे भाई हैं, अफसरान हैं बॉर्डर्स पे, जहाँ जहाँ पर ड्यूटी करते हैं, उन सब के लिए मेरा, मेरी पूरी टीम का, तमाम आरजेस की तरफ से बहुत सलाम अकीदत है, बहुत सारा प्यार है. आपकी वजह से यकीन करें हमारा सर फख्र से बुलंद होता है, एंड वी रियली फील प्राउड अबाउट यू.
1: बेशक
0: आरजे मोहसिन के चेहरे पे ग्लो आने दें, आप भी दिखा देते हैं, आरजे मोहसिन भी दिखा देते हैं आपको, रौला ही कोई नहीं है. और हम बात करेंगे जी कलर के ऊपर, नारंगी कलर के ऊपर. और ये मोहसिन जरा अपना चेहरे का दीदार तो करवाओ ना. ये मोहसिन, हेलो, अस्सलाम
1: वालेकुम, कैसे हैं आप? सारे ठीक हैं?
0: माजबीन मुश्ताक थी, उनको इश्तियाक था.
1: अच्छा मैडम, थैंक यू वेरी मच.
0: ये नजर आ रहा है?
1: नहीं अब ठीक है, अब मुझे लग रहा है अब ठीक.
0: नहीं इधर से ज्यादा अच्छा,
1: इधर से ज्यादा अच्छा. फिल्टर चेंज करे,
0: फिल्टर लगता ली है यार, फिल्टर ली लगता. ओके आई वांट यू टू टर्न द लाइट बैक. अच्छा जी आयशा, पहुंच गया मैसेज, पहुंच गया, बिल्कुल ठीक है. रोशी क्या कहती हैं? मैं भी ऑरेंज कलर का को शौक से जेबतन करती हूँ. क्या बात है आपकी. सलमा है, शाम होते ही तेरी याद की पागल खुशबू नींद आंखों से सकून दिल से मिटा देती है. क्या बात है आपकी. अच्छा जी ऑरेंज कलर के बारे में जी, चलें जी मोहसिन भाई क्या कहते हैं आप?
1: सर ऑरेंज कलर के बारे में
0: जरा मोटा मोटा सा पहले थोड़ा सा बताएं.
1: मोटा मोटा सा सर, ऑरेंज कलर जो है ये तवानाई, खुशी, जोश और जो दूसरों के साथ कनेक्शन है, ये इसकी अलामत समझा जाता है. ये फन और एक्साइटमेंट का ये एक है, इसमें आंसर पाया जाता है.
0: वाह वाह, फन मतलब फन लविंग होते हैं.
1: जी जी, फन लविंग होते हैं.
0: दे आर वेरी सोशल एंड वेल कनेक्टेड विद पीपल, और इनका एनर्जी लेवल भी बहुत
1: बहुत हाई होता है.
0: ऑलवेज दे आर रेडी टू डू थैंक्स, ऑलवेज दे आर हैप्पी टू डू थैंक्स, और शोक मिजाज भी होते हैं.
1: बिल्कुल ऐसे ही है,
0: चाकाओला नहीं करते, कभी कभी मुंह फट भी हो जाता है. बाहर इस पर डिटेल में आगे चल के बात करते हैं. मेरी बेटी आपको सलाम दे रही है, सैयद मोहम्मद अली जिया साहब, उसका नाम लेकर उसको जवाब दें. जिया भाई आपकी बेटी का नाम नहीं है मुझे पता. बहरहाल छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार मोहब्बत और दस्त शफकत उसके सर पे रखिएगा और अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। बहुत सारी दुआएं हैं उसके लिए। ले जी गाना सुने और आते हैं हम ऑरेंज के साथ वापस। गर्मियों के मौसम में ऑरेंज के साथ वापस आए जालमा। मैं भी सुन के देखा है गाने च कौन है जालमा।

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:51 और आज 3 सितंबर 2026 का सन है। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में आरजे मोहसिन। कैसे हैं मोहसिन आप? आज के दिन हम बात कर रहे हैं ऑरेंज कलर पे। और मोहसिन सुनाओ। अच्छा ठीक हो, वेल ठीक हो गया। अगला मैसेज किसका आया मोहसिन? अच्छा आप इस सरताज का आया। अच्छा आप इस सरताज क्या कह रही हैं? मैं बताता हूँ, इंसान की शौर उस वक्त आता है जब वो अपनी मासूमियत और बेसाख्तगी के अरूज पर एक शदीद सदमा बर्दाश्त करता है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ये चैट जीपीटी से तो नहीं पूछा आपने? मुझे तो लग रहा है चैट जीपीटी से पूछा। क्यों मोहसिन? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चैट जीपीटी से ही पूछा हुआ उन्होंने। यार बहुत अच्छी बातें कह रहे हो मोहसिन, कहाँ से सीख के आए? यार थैंक यू वेरी मच, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिदा राजपूत कह रही है आज मोहसिन के चेहरे पर ग्लो क्यों नहीं आया? क्योंकि लाइट उसके मुंह के पास नहीं थी। अगर उसके मुंह के पास करता तो उसके चेहरे पर ग्लो आ जाता। हसीब है, कहते हैं सब में अलग नजर आता है क्या? ये नहीं बताया आपने। जूम वाली बातें क्यों कह रहे हैं आप? रिजवान कहते हैं आरजे मोहसिन को सलाम।
1: वालेकुम सलाम।
0: मरीना बिलाल कहती है बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदत पुरानी है। क्या कहा?
1: बारिशों के मौसम में तुमको याद,
0: बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदत पुरानी है। अब के हमने सोचा था आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: अल्लाह मुझे भी शायरी अच्छी पढ़ने की तौफीक
1: दे।
0: आमीन।
1: बावाजिब लग।
0: अच्छा जी, नौशीन रशीद साहिबा ने सलाम किया है और पेशावर से सुनती है। मड़ा कैसी है आप नौशीन? ठीक है, सब खैर खैरियत? मौसम कैसा है? सुहेल अब्बास, वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक है? ये शो इज ब्रिलियंट, गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद,
1: पाइंदाबाद।
0: सुहेल अब्बास कह रहे हैं मिस यू, लव यू। ओके, लव यू टू ब्रो। अच्छा जी, अली जया कहते हैं मेरी बेटी का नाम हादिया फातिमा है। सैयदा हादिया फातिमा, बेटा आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेस, खुश रहो और रज के अब्बा को तंग करो। अब्बा के पैसे लगवाया करो, अब्बा से चीज़ें खाया करो, रोज अब्बा को तंग किया करो। जितना अब्बा को तंग करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। अब्बा जितना खिलाएंगे अब्बा को सवाब मिलेगा। अब्बा ना खिलाया करें, उन्हें बताया करें, बच्चों पर खर्च करें ताकि अल्लाह आपके रिस्क में और फरावानी दे। ठीक है, अब्बा भी कहते मैं किन्नु कहता यार
1: कहते
0: है तो गलती
1: ये तो उल्टा हो गया।
0: माजवीन कहती हैं अच्छा ठीक है, कहती है आपके चेहरे पे इतना ग्लो जो आ रहा है, कहीं आपको इश्क तो नहीं हो गया? हाय
1: अल्लाह,
0: दुखती रगों पे हाथ मत रखो लड़की, मत करो। मोहब्बत का अपना ग्लो होता है। हाँ, मोहब्बत का ग्लो होता है, लेकिन मोहब्बत है कोई नहीं यहाँ पे पास मेरे, कहाँ है?
1: खाली ग्लो ही है।
0: मोहब्बत किधर है? कहीं पे देखी है आपने आती जाती?
1: नहीं सर,
0: एक साल हो गया। मैंने ना भी हो ना, लाइट ना भी हो, आप फिर भी ग्लो करेंगे। अब मुझे आप क्यों हंसाना चाह रही हैं? वो मुझे याद आ रहा है, माइंड थेरेपिस्ट ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। मुझे याद आ रहा है मैं और मेरा कजन ना, हम जब पैदा हुए, मेरी खाला का बेटा, उसके साथ मेरा बचपन ज्यादा गुजरा ना, हम दोनों में मुमासिलत बहुत थी रंगों में।
1: ओके,
0: हाँ बहुत ज्यादा शदीद,
1: शदीद किस्म,
0: शदीद किस्म की। वो तो फिर असि नहर च नहा जाते, नहर के अंदर ना जो थले मिट्टी पई होंगी ना, वो कड के ना मुंह उत्ते मल ली, पूरे पिंडे उत्ते लानी, कितों रंग चिट्टा ना थोड़ा जहा हो जाए।
1: ओके,
0: पक्का रहना चाहिए ना, अच्छा है, टैन शैन नहीं, थोड़ा जरा उससे
1: नेचुरली
0: नेचुरल होना चाहिए। फिर लगा के हमने धूप में लेट जाना,
1: ओके,
0: ताकि पक्का होगा ना, जरा शेड पक्का होना चाहिए। आई रिमेम्बर वो वेंट, हम जाया करते थे अपनी नानी की तरफ ना।
1: ओके,
0: तो माशाल्लाह हमारी कजन गोरी छुट्टी छोटी थी, हमसे छोटी छोटी गोरी थी, तो कभी मैंने आना, कभी उम्र दे, वो नीचे जो एंट्रेंस थी ना वहाँ, वो डार्क था, डबल स्टोरी घर था और डार्क एरिया था, वो उधर जाते डर भी लगता था। तो वो कजन का नाम नहीं मैं लूंगा, मैं सुनता हूँ कभी कभी प्रोग्राम में, लड़ना ही शुरू कर दे।
1: ये भी बड़ा मसला है।
0: ऊपर से मेरी कजन जो है ना, तो जब एंटर हो गए ना, मैं तो आगे आ गया, उसने कहा पीछे कोई और है, मैं कहा हाँ
1: जी है,
0: नाम लिया। वो बोला कहता नजर नहीं आ रहे आप, मामा जरा थोड़ा सा आटा लाए भाई के ऊपर फेंक, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, अंधेरे में मिक्स हो गए। शुक्र कीता मैं अगे लगा, मैं भी उसे रगड़े चाह देना। सो छोड़े आप किस ग्लो की बात करती है। अहमद आसिफ है, हेलो डॉक्स, पहली बार लाइव देख रहा हूँ सर, उम्मीद करता हूँ आप डिसअपॉइंट नहीं हुए होंगे। अच्छा चले कोई नहीं, नाइस बीजीएम, थैंक यू वेरी मच जी। मैडम सलमा आपने पसंद किया, मड़ा आम सब ठीक है, आप संगा हो संगे हाल ले। खा खा अगे नहीं आती मेरी, मुक गई है बस तो। अच्छा जी, ऑरेंज रंग के बारे में थोड़ी सी हम बात करते जाते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, मेन इसके ट्रेट्स जो है वो आपसे शेयर करते हैं। मुझे यहाँ पे किसी ने मैसेज किया, आई डोंट लाइक ऑरेंज कलर। ओके, यू डोंट लाइक ऑरेंज कलर, कोई मसला नहीं,
1: जिनको पसंद है उनके लिए है,
0: हम उनकी बात करते हैं। और एनर्जी लेवल पहले आपको बता दिया, और एंथुजियास्टिक होते हैं, मतलब इनमें जोश बहुत ज़्यादा होता है, दे आर ऑलवेज रेडी टू डू सो मैनी थिंग्स एंड मैनी थिंग्स, और हैप्पीनेस, खुशी का, खुशी जो है ना इनके अंदर होती है, दे आर रेडी एंड टू अवेल ऑल द अपॉर्चुनिटी जहाँ से उन्हें खुशी मिले, कोई भी मौका मिल जाए। क्रिएटिव माइंडसेट होते हैं और एडवेंचर इनको बड़ा पसंद होता है, कॉन्फिडेंस लेवल इनका अच्छा होता है, सोशल होते हैं, वार्म होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, करेज भी होती है, और बेसाख्ता किस्म के जुमले भी ठोक देते हैं बंदों को, जिसे कहते हैं ना फिल बदी बिस्ती कर देना,
1: बिस्ती कर देना होते हैं।
0: अली जहा कहते हैं, ऑरेंज रंग एक मुनफरिद रंग है जो सब रंगों में जल्दी नजर आ जाता है, ये तवानाई और जोश से भरपूर होता है। आप ये बताएं ऑरेंज कलर है या फ्रूट है? ऑरेंज फ्रूट की बात कर रहे हैं, आपने सही पहचाना। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: आसिफ बोल सिंह
0: जी।
2: हेलो
0: हेलो, यार पिज्जा का ऑर्डर ड्रॉप कर देना।
1: ड्रॉप
0: पिज्जा, क्लाइंट भाग गया हमारा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑर्डर प्लीज।
3: अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक क्या कहती आप?
0: यार इनकी कॉल कैसे मिल जाती है,
1: हैरान हूँ मैं।
0: हैरान तू ना है इनके पास। हाँ जी,
1: कुछ चोर सुच है इनके पास।
3: ये मैं थोड़ा मिलाता हूँ या मैं थोड़ा उठाता हूँ, आप खुद उठाते मेरी कॉल जी, आपको पता तो नहीं चलता। फिर
0: आंदा के बाद हूँ मैं टाइम ही ताड़ देना, इस टाइम ना चुका फिर मैं।
3: नहीं तुसी वेले करो ना, कौन आ गया
0: वो नहीं पता चलता ना।
3: अच्छा जी, माशाल्लाह जी, बहुत बहुत आपको सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
3: बहुत अच्छा माशाल्लाह।
0: आपका पसंदीदा कलर ऑरेंज है?
3: जी ऑरेंज तो देखो ये बहुत अच्छा कलर है, माल्टा कलर हम पंजाबी में कहते हैं, माल्टा कलर।
0: माल्टा खाने में पसंद है या पहनने में?
3: नहीं, देखने में भी पसंद है, खाने में भी पसंद है। आप तो पहले मीठे की बातें कर रहे थे ना।
0: नहीं, माल्टा माल्टा माल्टा पहनने में पसंद है, खाने में?
3: दोनों भी पसंद है, खाने में भी।
0: अगर आपको पहनना हो तो कितने माल्टे के छिलके लगेंगे?
3: माल्टे के छिलके लग जाएंगे कोई 25-30 माल्टे के छिलके।
0: सर पूरे जिस्म पे पाना है।
1: पूरे जिस्म की बात कर रहे
3: नहीं नहीं जलाबे बड़ी जलाबे बड़ी। तो जो मीठे की बातें कर रहे थे ना आप, तो बोलना चाहिए थे मैं।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से ख़बरें सुनिए। पहले अहम ख़बरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत के अवलीन तरजीहात में शामिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और इस्लामी तआवुन तंजीम के नौ मुंतखब सेक्रेटरी जनरल ने टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए तंजीम के किरदार को मुस्लिम उम्मा की खिदमत के लिए मजबूत बनाने के लिए करीबी तआवुन जारी रखने पर इत्तफाक किया है। कौमी हंगामी इदारे ने आइंदा 3 रोज के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का इंतबाह जारी किया है। और 19 साल से कम उम्र खवातीन खिलाड़ियों के कौमी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कल कराची में स्टार्स और चैलेंजर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा।
1: This is FM 101.1.
2: हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। खबरें आ गई थी सर, खबरें।
3: हाँ जी, मुझे मालूम पड़ गया, मैं समझ गया बात का। बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका शोर। तो वो मीठे पे बात हो रही थी ना, वो एक जगह ना एक बेटी थी तो दो बेटे थे।
2: सलमा राशिद साहिबा वो कहती है 5-6 दरख्तों के माल्टे लगे एक कपड़े एक सूट सीने में।
3: देखे हम तो
2: मैडम हम लहंगा सीने तो नहीं लगे गए नहीं, आजकल वो काफ्तान वाले ड्रेस भी चला, वो तो नहीं सी रहे, या कौन सा ड्रेस सी रहे, फर्शी सलवार वाला होगा। 5-6 दरख्तों के माल्टों के चल के लग रहे, उनकी तो सिर्फ सलवार ही चलेगी। बंदों के तो मेरा ख्याल है हमारे तो शायद एक या दो दरख्तों में ही काम गुजार हो जाएगा।
3: वो आप सिलाई की बात कर रहे हैं ना, मैं एक अपना
2: सर, तुसी कदे माल्टे दा छिलका पुट्ठा करके किसे दी अक्ख छिपाया?
3: ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਰੀ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਲਟਿਆਂ ਨੇ ਛਿਲਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ।
2: ਅੱਛਾ ਜੀ,
3: ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮਾਲਟੇ ਦੇ
2: ਮਨੋ ਸਰਦੇ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਈਦਾ।
3: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ,
2: ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ।
4: ਅੱਗ ਲਾਣੀ?
3: ਹਾਂਜੀ,
2: ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3: ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੂਰਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ।
2: दो
3: बेटे थे एक बेटी होती है जी।
2: अच्छा जी,
3: वो जब घर से जाने लगते है ना तो कहते बेटा हम तो जा रहे हैं कहीं पे, जो मेहमान आए उससे मीठी मीठी बातें करनी है।
2: अच्छा जी,
3: वो जल चल जाते तो मेहमान आ जाते है, तो वो ना आके बैठते वो पूछते है बेटी आपका क्या नाम है।
2: अच्छा जी,
3: कहती जी मेरा नाम फर्शी है।
2: अच्छा जी।
3: अच्छा, दूसरे से पूछते बेटा आपका क्या नाम है, मेरा नाम गुलाम जामन है।
2: वाह वाह।
3: तीसरे पूछते आपका क्या नाम है, कहना हमारा नाम रसगुल्ला है। तो बेटा तो आप पैदा कहाँ पे हुए थे, कहने मिठाई के डिब्बे में। मीठी मीठी बात।
2: वाह वाह वाह वाह, ये भी अच्छा है, घर के बाहर उन्होंने लिखा होगा मिठाई का डब्बा।
3: तो एक पहले वक्त पे ना
2: सर, मेहरबानी सर,
3: अच्छा शुक्रिया
2: सर, थैंक यू सो मच, दौसा फ्लाप, बड़ा अच्छा लगता है आप फोन करते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी सर,
3: बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह खुश रखे आप
2: सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, हम बात कर रहे हैं ऑरेंज कलर के ऊपर माल्टा खाना है, माल्टा पहनना है, या किसी की आंखों में निचोड़ना
4: है।
2: साइकोलॉजी ऑफ माल्टा, माल्टा ही चढ़ गया, साइकोलॉजी ऑफ ऑरेंज कलर पे बात कर रहे हैं, और हम बात करते हैं क्वालिटीज के बारे में। कल मेरा शो है आफ्टर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, माशाल्लाह। तो आप क्या सुन रहे हैं मुझे, आप शो के लिए कॉन्टेंट लेना चाह रहे हैं, मेरा कॉन्टेंट आपके शो में चलेगा नहीं, मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, सोशल होते हैं लोगों, कुछ लोगों में पता है सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, दे कैन नॉट इंटरेक्ट, वो हर किसी के साथ बात नहीं कर पाते। जो कहते हैं ऑरेंज कलर लवर्स होते हैं ना, इनके अंदर ये मसला नहीं होता, इन्हें बात करनी आती है, लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे ताल्लुक बना लेते हैं, और नया काम सुनने के लिए, नया काम करने के लिए ना, आपको पता है आपके अंदर एनर्जी लेवल
4: होना चाहिए,
2: कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो खुद एतमादी बड़ी,
4: खुद एतमादी
2: इनके अंदर, ये चीज़ बहुत ज्यादा
4: कॉन्फिडेंस होना चाहिए
2: और फिर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सॉल्यूशन तलाश करते हैं, हर काम को पॉजिटिवली लेते हैं और ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में। और एडवेंचरस होते हैं, नए नए पंगे लेना और नई नई चीजें करने का बड़ा शौक होता है, क्रिएटिव होते हैं नई चीजें करने का, और करेज होती है इनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। फिर एंटरटेनिंग होते हैं, एंटरटेनमेंट को, फन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
4: ट्रैवलिंग भी इनमें वो है,
2: जी जी ट्रैवल करते हैं, कार से कितनी माउंटेन्स देखते
4: हैं, नहीं मैं वैसे ट्रैवलिंग का उनको शौक होता है।
2: आपको क्या लगता है वो यही से कहते हैं मुझे उधर फिर आके ले आओ मैं उधर चला जाऊं?
4: नहीं सर, आजकल तो गूगल पे हर जगह जाया जा सकता है।
2: अच्छा,
4: मैं अभी
2: से मुल्क फिर के आया,
4: मैं आपको बताने लगा हूँ अभी, मैं कल वो नथिया गली मरी ये मैं सारा घूम के आया हूँ गूगल पे।
2: आपको पता है माल्टा एक कंट्री भी है?
4: जी जी।
2: आप गए वहाँ पे?
4: नहीं मैं नहीं।
2: आज सारों ने बैठ के गूगल के थ्रू वहाँ पे जाना। अच्छा अच्छा जी, हाय अल्लाह तुहानू किन्ना पता फर्शी सलवार दे बारे। जाहर है वो जदों सलवार चली सी लाहौर दी सड़कां साफ हो गईयां सी जिधर जिधर फर्शी सलवार पहने गई
4: सफाई
2: हो गई,
4: सफाई
2: सारी लड़कियां और खवातीन फर्शी सलवार पहन के फिरती रही, जितना कूड़ा था सारा हूं झांच के ले गई थी वो, सारी उन्होंने सड़कें साफ कर दी थी। दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, मेरा ख्याल है ये ट्रेंड परमानेंट होना चाहिए, सरकार को पाबंदी लगा देनी चाहिए, हफ्ते में एक दिन सारी खवातीन फर्शी सलवार पहने और इज्तमाही वॉक करने निकला करे।
4: ठीक है, और इस दिन जो काम करते उनको छुट्टी होनी चाहिए।
2: It's 11:06 p.m. on the dial, 3rd of September 2026. This is Ajay Dock, you're listening Night Therapy. और आपका मेरे साथ होता है जी 10 से 12 बजे तक, और आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ ऑरेंज कलर। एंड आज मेरा दिल किया यार मैं मैशअप प्ले करता हूँ ना जरा कैफी खलील
5: हमारी बात शुरू तुमसे और तुम्हें पे खत्म।
2: नहीं मुझे नहीं पसंद आया ये क्या बात हुई, हम कोई और लगाएंगे। अब बता ना यार मौसम क्या लगाएगा
4: सर, जो भी आप लगाएंगे वो अच्छा ही लगाएंगे।
2: मेरे दिल मैशअप सुनने को कह रहा है, ओएसटी मैशअप लगाते हैं, पाकिस्तानी गानों का ना ओएसटी का मैशअप लगाते हैं, ड्रोन पिटन वाले गाने भी सारे आ जाएंगे।
4: हाँ वो एक की लिस्ट में सारे।
2: शाह जी एक बकेट लेके आना, हमने मिलके कट्ठे ना रोना है दोनों ने गाने सुन के तो भर जाएगी, फिर आंसुओं का हम पानी हम किसी दरख्त को लगाएंगे वो बड़ा आबियारी होगी, अच्छे फल उगेंगे,
4: वो भी मुरझा जाएगा, तो ठीक भी
2: होगा। आप सारे भी बकेट ले आए प्लीज, एक एक पौधा लगाए अपने आंसू बहाए

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:17 और आज है 3 सितंबर 2026 का सन। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। आपका मेरा साथ होता है 12 बजे तक बुध और जुमेरात की शब 10 से 12। एंड थैंक यू वेरी मच जी, जिन लोगों ने मैसेज किया एंड जिन लोगों ने अभी सुनना शुरू किया उनके लिए बताता जाऊं, जुमेरात वाले दिन बात करते हैं हम साइकोलॉजी ऑफ कलर्स पे, कि जो कलर आप पसंद करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, उनका आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पेक्ट होता है या वो आपकी ज़ात के बारे में क्या बताते हैं। वैसे मोस्टली मैं यही बात करता हूँ कि वो आपकी ज़ात के बारे में क्या बताते हैं, इसी पे हमारी बात चलती है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑरेंज कलर। हम बाकी कलर्स पे तो बात कर चुके हैं, अगर किसी ने किसी और कलर को पूछना है तो कोशिश करूँगा एंड पे बता जाऊँ। मैं ब्लैक और ब्लू के बारे में ज़्यादा पूछते हैं,
1: ज़्यादा वही पूछा जाते हैं,
0: और वाइट के बारे में पूछते हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा बात हम कर चुके हैं। बहरहाल स्टिल आई वंडर कि कितने लोगों को ब्लू ब्लैक एंड वाइट कलर पसंद है। लेकिन जो मैंने आज क्वालिटीज इसकी पढ़ी है ना जी ऑरेंज की, मैं सोच रहा हूँ आज से मैं ऑरेंज पसंद रंग बदलते रहना चाहिए
1: सर, वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती।
0: नहीं सर, गिरगिट की तरह बदलते रहना चाहिए रंग, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। लोगों का क्या, लोग तो बातें करते हैं,
1: उनका काम है।
0: आप नहीं बदलेंगे, हो देखो यार तू कल भी यही कर पहन रहा था,
1: आज भी यही पहन रहा है,
0: वो तू इतने साल पहले भी यही पहनता था,
1: ऐसा ही है।
0: तो लोग तो फिर कुछ भी कहते रहेंगे, इसलिए जो दिल करता करे, रंग बदलते रहे, को पूछे।

0: यार तू बहुत रंग बदलता है। हाँ जी, हाँ जी की तरह बदल लेने में कोई मसला नहीं, रोटी में अपनी खानी है, हैं जी,
1: किसी की टेंशन नहीं लेनी,
0: लेकिन टेंशन होती जरूर है,
1: ये तो है, एक वो लगी रहती है लेकिन लेनी नहीं चाहिए,
0: टेंशन होती जरूर है, चाहे आप कुछ भी कहते रहे। एनीवेज जी, हमने बात की है ऑरेंज कलर के बारे में, इसकी हमने बात की पहले स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज, नाउ वी टॉक अबाउट द वीकनेसेस। इंपल्सिव होते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दबाज,
1: हर काम में जल्दबाजी डाल
0: देते और जल्दी बोर भी हो जाते हैं किसी चीज से, जो ऑरेंज कलर को पसंद करने वाले लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है, जल्दी बोर भी हो जाते हैं, इंपेशेंट होते हैं, सबर का फुकदान
1: होता है,
0: और रिस्क टेकिंग भी बेजा कर लेते हैं। कवल ना साहिबा, वालेकुम अस्सलाम, शाहजेब शाजू, ये चांद कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाओ चंदा। अच्छा, ऑरेंज कलर इज नाइस माजबीन, थैंक यू, आपने बता दिया मुझे, अभी पता चला है यकीन कर। और अटेंशन सीकिंग भी इनमें पाई जाती है आजकल, वैसे सारों में ही पाई जाती है, सारी कहते हैं
1: तो सारे
0: देनी चाहिए। सुलेमान चांडिया बलोच ने सलाम किया, वालेकुम सलाम डॉक्स भाई, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और कमिटमेंट से घबराते हैं, ये एक बड़ी
1: ये एक है,
0: कमिटमेंट से घबराते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये देखा गया। डिसीजन जल्दी लेना पसंद करते हैं और एक ही तरह की रूटीन से नफरत करते हैं।
1: तो
0: नहीं बदलना चाहिए, और कोशिश होती है एक ही टाइम में बहुत सारे पंगे ले लें, हर जगह पे टांग,
1: मैं ये भी कर लूँ।
0: कभी कभी ऑरेंज लवर के लिए जो है कंसिस्टेंसी एक सबसे बड़ा चैलेंज होती है, जी सबसे बड़ा चैलेंज कि एक कंसिस्टेंट होके कोई ये काम
1: नहीं कर सकता,
0: ये एक बड़ा मसला होता है। और इनको पसंद क्या होता है, इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है, इन्हें एडवेंचरस लाइफ बहुत पसंद है, बैठ गए भी वट्टे मार दे रहे हैं। कुछ लोग होता है ना
1: दरिया किनारे बैठे
0: है, और गलती से फिर कहीं का कहीं लग जाता है, जिस तरह मेरा एक दोस्त था बट, उसको भी इसी तरह के एडवेंचर करने का बड़ा शौक था, फुटबॉल के ये चैंपियनशिप वर्ल्ड कप चल रहा था, अब उसमें पता है बड़ी बोतल शोतल है जिला के सुटते होते हैं, तो बट साहब ने भी देखा, उन्हें बड़ा शौक था फुटबॉल खेलने का, तो हम एक दुकान पे गए, अब दुकान थी थोड़ी स्टेप चढ़ के, एक दो तीन सीढ़ियाँ चढ़ के ना, नॉर्मली गली से थोड़ी सी ऊँची,
1: बिल्कुल ठीक,
0: तकरीबन को 2-2.5 feet हायर थी, तो मैं बाट अंदर बोतल, वो लोकल जी लोकल सोडा बोतल पकड़ी है, बटन है, हिलाई जा रहा है, मैंने कहा बट बोतल फट जाएगी ना कर, ओ नहीं नहीं गैस बनेगी,
1: गैस बनेगी फिर ज्यादा,
0: मैंने कहा बट ना कर, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैंने कहा चल फिर लगा रहे, पागल है तू,
1: आप साइड पे भी नहीं हुए,
0: मैं साइड पे था। चलो जी, बट साहब ने तसल्ली से जब गैस बना ली, जैसे ही बट साहब ने अंगूठा हटाया बोतल से, उसके अंदर से फवारा निकला।
1: अच्छा,
0: और फवारा निकला, बट साहब की किस्मत ऐसी, उसके वालिद साहब तशरीफ ले आए एकदम ऐसे दरवाजे पे दुकान के,
1: तो वो वाले साहब,
0: वो उनके वालिद साहब के रोशन पेशानी,
1: ओके,
0: जो दूर तक लंबी सारी पेशानी थी उसके ऊपर जाके, एंड आई वाज स्टंड, मैं कहा बट दा पियो तो सालम भी बड़ा है और तो खैर नहीं उस्ताद, और बट साहब के वालिद साहब के साथ उनके दोस्त थे जहीर साहब, अल्लाह बख्शे उन्हें जन्नत में जगह दे, फौत हो गए, तो वो भी साथ ही थे, भाईजान बोतल फिर ना होते बट दाबा बट उत्ते, और बट के अब्बे ने वहां से कुटना शुरू किया है, और घर तक कुटता हुआ लेके गया, और एक और उनके साथ एक और मसला भी था, बट को क्योंकि लंबी जुल्फे रखने का शौक था, उसके अब्बा जी क्या करते थे, जब भी ये उसकी अब्बा अम्मा ये प्रॉब्लम होती थी, उसकी टेंड कर देनी या टक लगा देने, बड़े शदीद किस्म के सख्त मिजाज अम्मा, बट साहब टेरेस पे फिर नजर आ रहे हैं हमें, टोपी पहनी हुई है, मैं कहा बट क्या हुआ नीचे आ, ओ नहीं नहीं नहीं, मैं कहा हुआ क्या, बट ने ऐसे टोपी उतारी, उसकी अम्मा ने पकड़ के उसकी जुल्फें जगह जगह से कैंची से फिर टक लगा दी, तो क्या ही बंदा कहे, फिर ओदी मैं टेंड भी की थी जाके।
1: अच्छा,
0: और अभी भी कभी मिलता है तो वो याद करता है, हम चले गए, हमारा एक हेयर ड्रेसर है, वो भी दोस्त ही था, तो मैंने कहा बट टेंड मैं पहले मैं करना, मुझे शौक था, मैंने कहा दोस्त है चलो मैं करता हूँ, अब भाई नाई तो नाई होता है ना,
1: वो तो प्रोफेशनल जो
0: हेड ड्रेसर दे यार, एक्चुअली प्रोफेशनल, उन्हें पता है कैसे चलाना है, हूँ मैं उस तरह पढ़िया, उस तरह को ऊपर लाना था, अब बालों की जाहिर है अपनी भी वो रगड़ होती है, अपनी रेजिस्टेंस है, मेरे को उत्ते तो ना आया, एंज चल गया बट के यहाँ पे कट लग गया, किटेड
1: गजनी स्टाइल वाला,
0: बट तब गजनी हो गया था जब गजनी आई भी नहीं थी. सो दिस इज फन यू नो, दिस इज हाउ लाइफ इज. तो एडवेंचर करने का शौक होता है लोगों को,
1: बट को भी ऑरेंज कलर पसंद
0: था. मुझे भी लगता है उस वक्त हमें इतनी सेंस नहीं थी. बहरहाल आई बिलीव उसे इसी तरह का कलर पसंद होगा. स्पोर्ट्स लवर होते हैं ऑरेंज कलर वाले, और जो ऑरेंज कलर को पसंद करते हैं न्यू एक्सपीरियंस और फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं. म्यूजिक इन्हें बड़ा पसंद है, फूडी बहुत होते हैं और सोशल गैदरिंग बड़ी पसंद करते हैं. चैलेंजेस इन्हें अच्छे लगते हैं, एक्साइटिंग कन्वर्सेशन इन्हें बड़ी पसंद होती है जिसमें कुछ ना कुछ एक्साइटिंग और फ्रीडम लवर होते हैं ये. और कोई गल है या मैसेजेस को शामिल?
1: मैसेजेस को शामिल
0: है जी. आगे हम और भी ऑरेंज कलर पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मैसेज करते हैं. शामिल रोशनी ने कहा था वो जेब तन करती हैं ऑरेंज कलर. अब आप यकीनन मेरी बात से किसी हद तक मुत्तफिक होंगी और मुझे बताइएगा क्या इस तरह की हरकतें आप भी करते हैं. अच्छा जी, चांद कहाँ गुम है? यहीं हूँ. आज भी आपने बोला नहीं मेरा सलाम अकीदत है तमाम फौजी भाइयों को. मेरा सलाम अकीदत है जी, मैंने बोला देर
1: से.
0: मेरी दुआ है आपकी जिंदगी में कभी कोई गम ना आए. आमीन
1: आमीन.
0: फायदा हैदराबाद से. मड़ा सिस्टर को कलर सिल्वर पसंद है, मुझे बिल्लू अच्छा लगता है, ऑरेंज कभी नहीं पहनती हूँ ना मुझे अच्छा लगता. मड़ा तुम क्या पहनता है तुम्हें, सिल्वर कलर पसंद है या बिल्लू कलर पसंद है? तुम्हें बिल्लू पसंद है, तुम्हारा सिस्टर सिल्वर कलर पहनता है. चलो गुड है, गुड. इस पे बात करते हैं. निम्रा शाह, सलाम वालेकुम अस्सलाम. सबको आपने सबको सलाम दिया और फिर कहती हैं आपने कभी आसमान पे ऑरेंज कलर को ऑब्जर्व किया है? हाँ जी, बहुत दफा किया है. जब बारिश हुई हो और सनसेट होने वाला हो, ऑरेंज रेंज की वो खूबसूरती कि शायद ही कोई मिसाल हो. फॉर मी यू आर वेरी राइट. और अक्सर ये बड़ा खूबसूरत सा मंज़र होता है आसमान पे, पिलाहट जब बदलती है और जो रात का कालेपन से पहले ग्रे शेड आने से भी पहले जो ऑरेंज का शेड आता है ना बादलों पे, इट लुक्स रियली वेरी प्रिटी. बरसात के अलावा भी अगर बादल हो ना तो भी बड़ा आता है. निम्रा यू आर राइट, इट मींस के आप नेचर लवर.
1: नेचर लवर.
0: ओके दैट्स गुड. फिदा राजपूत कहती हैं आप कितने नोटी थे और हैं अभी. मैं बहुत नोटी हूँ अभी. सही कह रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर जी. वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. मैंने आपको वो सॉन्ग मेरी जिंदगी है तू कहा था जी. मुझे बिल्कुल पता है जी, मुझे ये भी याद था. थैंक यू वेरी मच जी. चंदा माही, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डॉक्स कैसे हैं? आपकी तबीयत, मूड, मिजाज कैसे हैं? आप इतने खूबसूरत हैं फिर क्यों अल्लाह पाक की नाशुकरी करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हूँ, ठीक है. आपका हुस्न नज़र है, हुस्न अक्ल है, हुस्न दिमाग है. चंदा माही, डॉक्स सर आपका शो इतना है कि इंसान कितने परेशान क्यों ना हो सुन के दिल खुश हो जाता है. बहुत शुक्रिया. मैंने तो प्यार मांगा था. अच्छा फिर क्या मिला आपको?
1: दार उठी.
0: सर आपकी एज क्या है? मेरी एज गैस करें, ऐसे थोड़ी बताऊंगा. मेरी एज गैस कर लें. अभी यहाँ पे तखमीने लगेंगे. कोई कहेगा 52 साल, कोई कहेगा 58 साल, कोई कहेगा 60 साल. फिर मैं बताऊंगा आपको नहीं है, थोड़ी आपने कम बताई, थोड़ी सी ज़्यादा बताएं. अभी यहाँ पे कॉल लेते हैं. आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0422111001, 0421100101. आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं. अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई नहीं है, किसी वजह से कॉल नहीं मिल पाती, तो आप क्या करें, आप मुझे
1: 4471 पर मैसेज
0: SMS कर सकते हैं. आपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SMS करना है आपने. 101 लिखना है, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना और इसको भेज देना 4471 पे. हंसते हंसते मैं बड़ी बातें बता जाता हूँ आपको, सुन लें, यकीन करें फ़ायदा होगा आपको. बहुत सारी बातें बता देता हूँ. कल जी तो मैं नहीं होना ना, फिर याद आने नहीं आता. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम भाई जी.
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं?
2: ठीक ठाक भाई. नदीम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से.
0: नदीम कैसे हैं आप?
2: अल्लाह का शुक्र, तुझे सुनो अल्लाह पाक सारे अन्य अटैया सब अता तो सुलझे.
0: बड़ी मेहरबानी सर, कुछ कहना चाहेंगे?
2: नहीं, बहुत अच्छे बातें करें अल्लाह मियां लते पास के बताए
0: जी,
3: आपको और आपके साथी और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान बात कर रहा हूँ लाहौर से।
0: सलमान भाई साहब, कैसे हैं आप?
3: अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। रात को खूबसूरती पे बात हो रही थी।
0: हाँ जी, रात को
3: ऑरेंज कलर पे, आज ऑरेंज कलर पे हो रही
0: जी। ऐसे ही है जी,
3: खूबसूरती तो यह जो दिल और दिमाग पे सवार हो जाए वो खूबसूरती है।
0: वो खूबसूरती नहीं होती।
3: हाँ जी, वो क्या होती है? बेवकूफी
0: जी,
3: वो बेवकूफी होती है।
0: नहीं, अब आप मेरी बात सुने ना जी, आपकी तो माशाल्लाह शादी हुई है, हैं? तो आप उसे कह सकते हैं जो दिल और दिमाग पे शामिल हो, सवार हो जाए ना, उसे बीवी कहते हैं। आपको ये कहना चाहिए था। उसे बंदी कहते हैं। आप जान छुड़ाना भी चाहे, जान नहीं छुटती। आप जान छुड़ाने की कोशिश करें तो भी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। आप मजबूरन कहते हैं माफ कर दे, मैं 24 घंटे तेरे बारे च सोचिया कि मैं इहदे कोलों किवें अज बचना है, लेकिन मैं नहीं बचिया।
3: यार वो पता क्या कहती हैं, कोई ख्याल करो बच्चे जवान हो गए हैं, वो अब बैठी हुई है उधर जाके, मैं इत्थे इकल्ला बैठा, वो अब जब भी पास के भी बैठे, कोई ख्याल करो बच्चे जवान हो गए। अब तो ये सुन रहे हैं कई पिछले कई सालों से,
0: ऐसे ही सुनाती रहना। इन्होंने नहीं बाज आना, यकीन करो, इन्होंने मौका चाहिए है बस।
3: अच्छा आपसे बात कर लेते हैं, अल्लाह की कसम मजा आ जाता है।
0: आपको बीवी वाली फील आती मेरे से बात करके?
3: और नहीं नहीं, भाइयों वाली। भाइयों का एक अपना टेस्ट होता है, भाइयों का।
0: शुक्र है, मैं तो डर ही गया सी, मैं कहा हूं एह जी भी फील लेने लग पे मैं। ओ माय गॉड,
3: दुपट्टे की ये ऐसी बातें ना किया करें।
0: अच्छा, मैं क्या करूं, शर्म आ जाती है।
3: अल्लाह आपको दुपट्टे वाली दे।
0: अच्छा, आमीन आमीन, ये अच्छी बात आपने की, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू वेरी मच।
3: ऑरेंज कलर जो है ना वो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, खाने में भी, कभी पहनने में नहीं। एक दफा मॉल पे मैंने एक ऑरेंज शर्ट ली थी, आपकी भाभी कह रही आंटी के लिए, इनके साथ गया था, तो मैं जब ऊपर से ट्राई रूम से पहन के निकला ना, नीचे जितने लोग खड़े थे देखने लग गए ऐसे,
0: क्रिकेट
3: शिकट खेलते थे, हर चीज पूरी थी, कद भी था, रंग भी था, वो जिसने देखा वो देखते, बल्कि पूछा मेरी वाइफ से उन्होंने कि ये माशाल्लाह आप भी फिट हैं तो ये भी फिट है। तो वो एक वक्त होता है, उस वक्त एक ऑरेंज रंग पहना था, वो बिल्लू और ऑरेंज मिला के उन्होंने एक शर्ट बनाई हुई थी बड़ी जबरदस्त। तो वैसे ज्यादा सिर्फ ऑरेंज रंग पहने तो वो इतना अच्छा नहीं लगता।
0: सही कह रहे हो, सही कह रहे हो सर, थैंक यू वेरी मच भाट साहब,
3: बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। सोमरो सोमरो, सलाम सर जी, वालेकुम सलाम। मुझे भी ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, लेकिन जो ऑरेंज कलर के बारे में मैंने बातें फरमाई उनके बारे में आप सोमरो क्या कहती हो? अकबर खान साहब ने मैसेज किया, लाहौर की पोस्ट पे कराची से सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं, सदा सलामत रहे। अकबर खान साहब सच है गुड लिसनर, लेकिन अरसे से आपकी कॉल नहीं आई। हामिद चांद हैं, वेलकम टू द फैमिली शो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दी। शहीना अंसारी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सर, कैसे हैं आप, लिसनिंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, शर्म नहीं आ रही इतने अरसे बाद आई हैं आप, किधर होती हैं, शादी शुदी तो नहीं कर लिया आपने? शादी करके नॉर्मली लड़कियां गायब होती हैं। साजदा जहूर, हेलो दो दिल, फिर आरजे, फिर दो दिल, फिर वेलकम, फिर दो दिल, फिर जी दो दिल, फ्रॉम दो दिल फैसलाबाद, दो दिल, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात 14 इन्होंने दिल भेजे हैं, 4 में सुर्ख है, 4 में सबज रंग है, इसकी कोई लॉजिक नहीं समझ आई बाहर, ठीक है होएगी कोई लॉजिक। नज़ीर सोमरो आज मेरी लाइफ पे भी आए थे और कहते हैं मेरा मैसेज पढ़े सोबतपुर से, बड़ी बात है यार, मैं तुम्हें बहुत ही सारी उम्र समझता रहा, तुम तो इंसान निकला है यार, हैरत की बात है भाई। रियाज भट्टी साहब, सुपर, थैंक यू। रेहाना खान बखर से सुन रही हैं। मलिक वसीम अवान मुंडा से आलकोटी, बहुत उमदा प्रोग्राम। इन्होंने हमें इतने रुके लिखे, मैंने कहा यार क्या बात है, कुछ स्पेशल रुके। तुम सारे एक जो रुके लिखते ने, लेकिन मैं संभाल के रखा, यकीन करें मैं फ्रेम करा के ना, जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा मैं देख कर रोया करूँगा, यकीन करें मैं देख कर रोया करूँगा। और फिर उस पर मैं आखिर पे कहीं ये लिख दूंगा, कभी हम भी खूबसूरत थे। कुड़ियां ने ते लुके नहीं लिखे, मुंडे ही सानू लिख दे रहे, हम इतने खूबसूरत थे। चले यार कोई नहीं, खैर हूं लिखना ही ना शुरू कर देना मैं। बाद चो पता लगे इतने, मैं बाद चो पढ़ा गया सारे पहले पढ़ लें। अगर लिखने ऐसी बातें कुछ नहीं लिखनी। अच्छा अच्छा जी, ओके ठीक है जी। मोहतरम जनाब, मलिक वसीम अवान से आलकोटी की तरफ से आपको आपकी टीम को सलाम।
1: वालेकुम सलाम,
0: थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड, वेरी काइंड। आई एम गोना टेक कॉल। अस्सलाम वालेकुम, हेलो।
4: हां अस्सलाम वालेकुम शाहिद अंसारी हैदराबाद।
0: वालेकुम अस्सलाम जी। सुलेमान चांडिया साहब मेरी उम्र पूछ रहे थे, बिल्कुल आपने सही अंदाजा लगाया जी, बिल्कुल ऐसी है। आप क्यों हंस रहे हैं, आपसे तो बात ही नहीं की हमने अभी।
4: आप बट साहब को बोलो कि पापी मैं तेरी बीवी लगता हूँ यार, हमें कह दो यार अपना जो है डॉक्स यार, हम मान लेंगे यार, हमारी नहीं है भाई।
0: बड़ी गल है जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वैसे क्या कह रहे थे आप?
4: एक गिफ्ट भेजा है आपको।
0: हाँ अरे अंसारी साहब जी, आपका तो गाना भी आया हुआ है अजी, इसका लिंक कोई नहीं है? लिंक इसका कोई नहीं है फेसबुक पे या यूट्यूब पे?
4: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
0: अजी हजूर, ये कैसे चलाएंगे हम? अदील भाई ये गाना मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये शायद अंसारी साहब का गाया हुआ गाना, ये जरा सिस्टम में तो मेरे ऐड करें ना, मैं आई वॉन्ट टू प्ले दिस ट्रैक। ये मैंने आपको व्हाट्सएप किया जी अंसारी साहब, और तो कुछ नहीं आपका कहना बनता, गाना जो आपका है लगने लगा, अब आप जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी आपका गाना लगाते हैं ऐड करवा के, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये बदतमीजी थी?
1: नहीं नहीं,
0: अच्छा नहीं, ठीक है। मोहम्मद वाजिद है, ब्लैक कलर द बेस्ट भाई, आप जो कलर पहनेंगे बेस्ट है। शहीना अंसारी, नहीं सर मैं तो यही हूँ कराची में, अभी भी सिंगल हूं, कहीं नहीं गई। कराची में है ना, चली जाए। आप शादी करा ले। हेलो
5: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
5: हेलो
0: जी जी, हेलो
5: जी भाई, क्या हाल है?
0: अच्छे हाल है जी, कौन है हमारे साथ?
5: मेरा नाम नादरा है, मैं औरंगी टाउन से बोल रही
0: हूँ। नादरा औरंगी टाउन से, कैसी हैं आप?
5: अल्लाह का शुक्र भाई, आपने पिछले जुमरात को कहा था ना कि मेरी पिक्चर देख लो, मुझे तुम सुनना भी पसंद नहीं करोगे। तो आप ये देखिए कि कोई आपको देख भी लेगा ना, तो जिस लगन से आपके शो अभी सुनता है ना, उसी तरीके से उसको भी सुनेगा, इसलिए क्योंकि हम बुध और जुमरात का इंतजार करते हैं आपको शो आएगा,
0: आपकी मोहब्बत है ना, आपकी मोहब्बत है।
5: हाँ भाई बस ये है कि आप हमारे लिए ही आते हैं, बस ये है कि आप ऐसा कह देते हैं कभी कभी तो दुख होता है थोड़ा।
0: अच्छा चले मैं नहीं कहता, आप आइंदा मैं कहूँगा आपके लिए ये जुमला नहीं है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं?
5: अल्लाह का
0: शुक्र,
5: अल्लाह का शुक्र। बाकी शो बहुत अच्छा लगता है हमें, हम तो बस
0: बहुत शुक्रिया। अगला गाना आपके लिए है फिर, मेरा खुश कर दिया आपने। अगला गाना आपको डेडिकेटेड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नादरा, अल्लाह हाफिज। सारा अली जई आई हैं, हेलो कह रही हैं, हाय। कहाँ से, कौन सी कंट्री से हैं आप? फ्रांस, इटली, यूके, वे आर यू फ्रॉम? सारा सिंह हेलो, नॉर्थ इस्लाम, नो रहमत, नो ब्लेसिंग। सिद्धई गाना लगाते, गाना सुना, ये गाना अच्छा लगेगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। हम बात कर रहे हैं ऑरेंज कलर पे, वक्त हो चुका है 1:40 तकरीबन 40 मिनट,
1: 11:40
0: सॉरी 39 ही है ना,
1: 39
0: 11:39 हो गए और 3 सितंबर 2026 का सन है। ये नहीं कि मैं उर्दू स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन ये कुछ मेरे से कन्फ्यूजन हो जाती है। 11:39 PM ऑन द डायल एंड 3rd of September 2026, दिस इज आज डॉक्स, आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी। आज बात करें हम साइकोलॉजी ऑफ कलर, ऑरेंज कलर पे, एंड रात शबनमी ब्यूटीफुल ट्रैक बाय स्ट्राइक। Here you go. चले चलते हैं फिजाओं में, घूमते हैं, enjoy करते हैं। I'll be taking a call 04221100101 and you can send me your SMS। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है आपने, 1 0 1 लिखना, स्पेस देनी, अपने नाम और पैगाम लिखना, इसको भेज देना आपने 4471 पे।

0: हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:45 और आज है जी 3 सितंबर 2025 को सिन है और आप सुन रहे नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और मेरे साथ हैं आरजे मोहसिन। कैसे हैं मोहसिन आप? ठीक हैं?
1: हाँ जी सर,
0: मुझे ये बताइए कि ऑरेंज कलर लवर्स जो होते हैं उन्हें क्या चीज़ ना पसंद होती है?
1: सर उन्हें जो
0: बोरिंग किस्म की रूटीन,
1: जी बोरिंग किस्म की रूटीन,
0: एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन, पाबंद करने की कोई कोशिश करें, कंट्रोल करने की कोई कोशिश करें, वो भी नहीं पसंद होता। और रेपिटिशन और सीरियस किस्म का एनवायरनमेंट उन्हें बिल्कुल
1: पसंद नहीं होता, मतलब क्योंकि वो फन को पसंद करते हैं ना।
0: और इमोशनल मैनिपुलेशन उनको पसंद नहीं आती, और माइक्रो मैनेजमेंट, छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना, वो कहते हैं मेरा काम नहीं है करना।
1: हाँ
0: सही करें, है ना,
1: वो एक वक्त में बहुत ज़्यादा काम करने की आदी होते हैं, बड़े बड़े काम।
0: इनकी लव लैंग्वेज वैसे क्या होती है? लव लैंग्वेज, यू नो आजकल ये बहुत चल रहा है, लव लैंग्वेज क्या है? आगे आगे इनकी लव लैंग्वेज, क्वालिटी ऑफ टाइम, वक्त दें इन्हें,
1: ओके,
0: वक्त गुजारें इनके साथ, शेयर करें इनके साथ अपने तजर्बात, फन करें इनके साथ, और सरप्राइजेज इन्हें दें, और अचानक से कोई प्लान बनाए।
1: ये इनकी ये हाँ, पसंद करते हैं
0: इनकी लव लैंग्वेज, फिजिकल अफेक्शन इन्हें बड़ी पसंद है, और ये अट्रैक्शन इन्हें होती है कॉन्फिडेंट लोगों की तरफ।
1: बिल्कुल ठीक।
0: इंटरेस्ट जो करें ना इनकी रूटीन के अकॉर्डिंगली, और जिनका एनर्जी लेवल अच्छा हो, और जो इंडिपेंडेंट हो, खुद मुख्तार हो, उनके साथ इनकी बड़ी अच्छी बनती है। और अगर हम बात करें ना ऑरेंज की, हम कंपैटिबिलिटी की अगर बात करते हैं, तो कंपैटिबिलिटी इनकी येलो के साथ जो है 94% होती है। यार आप ऑरेंज लवर हैं, कोई आगे से आपको येलो लविंग मिल गया, तो वो भी थोड़ा सा इसी तरह के होते हैं ना, जरा फाल और इसी तरह के क्वालिटीज पाई जाती है इनका, बड़ा अच्छा आपस में बनता है, और दोनों इम्पल्सिव होते हैं, बड़ी जल्दी जो है ना सिचुएशन पर डिसीजन करते हैं, तो इशू आ सकते हैं इसी वजह से इनके दरमियान में। और अगर आप बात करें ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन, इसका 91% है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, दोनों डोमिनेटिंग किस्म का स्टाइल है इनका, और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ सकते हैं,
1: आ सकते हैं।
0: पिंक के साथ अगर बात करें 79% कंपैटिबिलिटी है इसकी। रोमांटिक कपल, हैवी किस्म का,
1: हैवी किस्म
0: है ना, ज्यादा भी हैवी नहीं होना चाहिए, जुतियां भी पै जाती हैं बाहर
1: नॉर्मल वाला
0: बाहर इमोशनल रीएश्योरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है पिंक कलर को ना, वो कहते हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे रीएश्योर करे, और ऑरेंज कहता मुझे फ्रीडम चाहिए, दिल करेगा तो बताऊंगा, दिल करेगा नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पे इनका इशू आ सकता है। पर्पल के साथ 76% है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डीप कन्वर्सेशन दोनों, मतलब देखो ना इन्जॉय दैट। फिर वहीं पर वही है, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेप्थ चाहिए होती है पर्पल,
1: बिल्कुल ऐसी है,
0: यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ग्रीन के साथ इनका अच्छा कॉम्बिनेशन है 70%, और ये भी ठीक है, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और वाइट के साथ अगर बात करें तो 72% है, और हाई एनर्जी है वाइट को जो है ना, ऑरेंज की हाई एनर्जी थोड़ा दबा सकती है, तो दबने की वजह से कहीं ना कहीं इशू आता है। ब्लू के साथ अगर ऑरेंज लवर और ब्लू कलर लवर है, इनके 62% कंपैटिबिलिटी है। ब्लू काम होते हैं, ऑरेंज ज़रा शोखे किस्म के होते हैं ना जी, तो इस वजह से दोनों में थोड़ा सा फड्डा बन सकता है। अगर ब्लैक के साथ बात करें 61% कंपैटिबिलिटी है। ब्लैक को मिस्टी और प्राइवेट किस्म की ज़रा लाइफ रखना पसंद होती है, जबकि ऑरेंज एक्सप्रेसिव होते हैं, सोशल होते हैं, तो कन्फ्लिक्ट प्राइवेसी और सोशल लाइफ आ सकता है। ब्राउन के साथ इनका है 65%, और अगर ग्रे के साथ बात करें तो 50% है। गोल्डन के साथ इनका बड़ा अच्छा है, 84% है। ईगो के क्लैश लेकिन दोनों में आ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑरेंज। ठीक है जी, अभी यहाँ पे SMS मैं रीड करता हूँ जिन लोगों ने किए हुए उनके। अच्छा जी सर, आपकी एज क्या? मेरी एज पता चल तो गई है आपको, अभी देख लेते हैं, मैसेज भी हैं। थैंक यू सर फॉर प्लेइंग जालिमा, होप यू लाइक इट। यस आई डिड आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। MT लाहौर से, पुराना याद घर करोगे दगा करोगे मेरे वाली तुसी भी, मेरे वाली ते तुसी भी भरोगे, अल्लाह जानदा जो जुल्म कमाओगे बंदा बड़ा पछताओगे। ये तो कोई गाने के लिरिक्स हैं, बहरहाल ठीक है। एक मैसेज आया, हेलो हाय सलाम पाकिस्तान, हफीज साहब ने भेजा, वालेकुम सर, आपकी एज 40 होगी या 100? 100 वाली बात मुझे समझ आ रही है।
1: 100 मल्टीप्लाई बाय 40
0: 100 मल्टीप्लाई बाय 40 400 साल का हो गया हूं मैं, और दो दफा मैं सांप से इंसान बन चुका हूं। 100 साल बाद सांप बन जाता हूं, फिर 100 साल बाद इंसान बन जाता हूं, अभी 60 साल बाद दोबारा सांप बन जाऊंगा, फिर मैं हाइबरनेट,
1: फिर इंसान हो जाएगी,
0: फिर हाइबरनेट हो जाऊंगा, फिर 100 साल के बाद दोबारा इंसान बन जाऊंगा, ठीक है, फिर आप सारों को पता नहीं किधर मिलूंगा मैं।
1: अब आपको कैलकुलेशन समझ आ गई है इसकी।
0: शहरियार हैं पकर में से, वट्टी कलर का बताओ। वट्टी कलर क्या होता है भाई?
1: ये कौन सा होता है? व्हाइट लिखना होगा,
0: व्हाइट कलर लिखना होगा।
1: ये व्हाइट
0: निकालो, व्हाइट और ब्लू के बारे अपना ब्लैक और ब्लू के थोड़े थोड़े से आप बात कर रहे हैं। चंदा ऐसे नहीं बोलते। अच्छा ठीक है जी। अस्मा की हर सांस आपके लिए दुआ गो है, बहुत शुक्रिया अस्मा जी। ये आप जो है ना, ये काम ही कर रहे हैं, जरा थोड़ा कनेक्शन ऊपर बनाए ना उन्हें, कि आधी आपकी लाइफ ही दे दें। वैसे आपकी एज कितनी है? आधी की मैनू दे दो ना, तुझे कर लें। काशिफ है दुबई से, टी स्टॉल कहते हैं लगाते, मेरा फेवरेट कलर ऑरेंज है और ये तमाम आदतें हैं मुझ में। क्या बात है, देख लें फिर। बाय द वे बता ही दे, इस 22 दिसंबर में कितनी एज हो जाएगी? अभी आप आ तो गए, इंशाल्लाह आई विल बी 39 इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच काशिफ भाई, आपका मैसेज मिल गया। सलाम आरजे डॉक्स फ्रॉम काशिफ जट, गुजरा वाला शो बहुत अच्छा है सर, ये जो दिल के इख्तियार होते हैं बड़े बा इख्तियार होते हैं। ओए ओए ओए, क्या बात है। हैदर फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, सर कैसे हैं? ठीक है आप, बहुत शुक्रिया, और एक्सीलेंट शो, हीलिंग इफेक्ट है आपकी आवाज में घर से दूर फौजियों के लिए। यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज करते हैं। आई लव एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल फौजी भाई, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। शर्मा राशि साहब DHA लाहौर से, थैंक यू वेरी मच मैडम, मैं आपको अपने उस्ताद की जगह समझता हूँ, और आप जब फोन करती हैं, मैसेज आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आला सॉन्ग डॉक्स, थैंक यू वेरी मच। आज अंसारी की तबीयत ठीक नहीं थी, जल्दी कॉल कर दिया। अभी उनके गाना लगाते हैं, बल्कि थोड़ा सा आप लोगों को भी सुनाते हैं, सुनिएगा। उन्होंने गाना अपना रिकॉर्ड करवाया, यू शुड बी वेटिंग फॉर स्टैक ब्लैक और डार्क ब्लू की लव लैंग्वेज बता दें। बिल्कुल बताते हैं, हैदर पाकिस्तान आर्मी से, ब्रो मैजिकल बैकग्राउंड म्यूजिक है आपका, घर से दूर ड्यूटी वालों के लिए कुछ स्पेशल हो जाए। आखिरी गाना ना मैं हैदर भाई आपके लिए लगाता हूँ, मेरे जहन में आ रहा है इसरार का एक सॉन्ग, लेकिन उससे पहले ये चलाते हैं हम, शाहिद अंसारी साहब ने गाना गाया, इजाजत हो तो कह दे, ये सुनते हैं। आई होप अच्छा गाया होगा, और मैं भी अभी सुनने लगा, म्यूजिक का आवाज तो अच्छा है। अंसारी साहब आई होप यू आर लिसनिंग।

0: अंसारी साहब बहुत अच्छी कंपोजिशन है गाने की और कंपोजिशन म्यूजिक एवरीथिंग इज सो गुड और एक दफ़ा शुरू में बहुत अपील करता, लेकिन आपके जो है ना अगर मैं वैसे ही तारीफ करता रहूँ, क्योंकि मैं नहीं करता बदतरीफी ना नॉर्मली, जो भी कोई बंदा बात कह दे, आपकी बिल्कुल बदतरीफी नहीं, जो आपने गाया ये मैं नहीं गा सकता, इतना भी नहीं गा सकता। अभी अगर आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा और फोकस करें, तो आप ज़रा रिदम में आएँ, जब म्यूज़िक के फ्लो के साथ चलेंगे ना, इजाज़त हो तो कह दें तो मैं, बहुत अच्छे लिरिक्स भी हैं, तो ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। आपने बहुत अच्छा गाया, एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं गा सकता, तो इसको थोड़ा सा और अभी ज़रा रियाज करें,
1: इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत
0: है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यकीन करें, मज़ा आएगा सुनने का। कंपोजिशन इज़ रियली गुड जी। और ब्लैक और ब्लू की कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, इट्स 92% जी कंपैटिबिलिटी। और ब्लू क्योंकि सुकून और एतमाद वफादारी का सिंबल होता है, ब्लैक ताकत आज़ादी और राजदारी का होता है, और डीप मगर कंट्रोल होते हैं। ब्लू जो होते हैं ना बड़ा गहरा सोचते हैं लेकिन ख़ुद को कंट्रोल लगते हैं, और ब्लैक जो होते हैं कम ही इजहार करते हैं, लॉयल होते हैं, प्रोटेक्टिव भी होते हैं, ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पाई जाती है ब्लू में, इस वजह से इनके कंपैटिबिलिटी का बॉन्ड बड़ा अच्छा बन जाता है। एंड आई होप इट विल वर्क टुगेदर, इट विल डेफिनेटली वर्क जी। मेरे भाई आपको मैंने एक कलर कहा था, कौन सा था?
1: जी जी वाइट।
0: हाँ
1: वाइट जो है वो पकीज़गी, सादगी, अमन, और कुछ नई अगर शुरुआत करनी हो तो ये उसकी अलामत समझा जाता है। और
0: वाइट वैसे भी इट्स अ सिंबल ऑफ पीस,
1: पीस,
0: इट्स अ सिंबल ऑफ पीस। आप जहाँ पे भी जाएंगे इस तरह की सेटिंग में आजकल देखते हैं, बड़े पीस के लिए आप यूज करते हैं इसको, इट्स अ रियली गुड कलर।
1: ये बहुत ज्यादा जो है ये पीस की ये है अलामत समझा जाता है।
0: हाँ,
1: और
0: इट इज अ रियली गुड कलर, इट इज अ रियली गुड कलर, वाइट इज अ वेरी गुड कलर। और
1: इनकी वो क्वालिटीज भी बता दें।
0: हाँ फटाफट बताएं।
1: दिल के साथ बहुत ज़्यादा साफ होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और सच्चाई को अहमियत देते हैं, इसके अलावा हर चीज़ को वो ऑर्गेनाइज रखना इनको पसंद करते हैं। ऑर्गेनाइज हर चीज़ इनको पसंद होती है। लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, सादगी में ज़्यादातर सादगी में रहते हैं, अमन पसंद होते हैं, इसके अलावा फैसले बहुत जल्दी कर लेते हैं, सोच समझ के करते हैं,
0: कॉन्फिडेंट होते हैं
1: जो भी फैसला करते हैं उस हवाले।
0: व्हाइट कलर इज अ वेरी गुड कलर। ग्रे कलर के बारे में पूछा था, इमोशनली कंट्रोल होते हैं, मैच्योर किस्म के लोग होते हैं, ऑब्जर्वेशन इनकी बहुत तेज़ होती है, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, और ये वो लोग हैं जिन पर आप रिलाई कर सकते हैं, और प्राइवेसी जो है ना ये अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं करते। और हमना खान आपका बिल्कुल मैसेज मैंने पढ़ लिया, अब मैं इसको पढ़ लिया लेकिन मैं ऑन एयर नहीं पढ़ सकता यार, क्या मैं ब्लैक और रब उसकी क्या लव लैंग्वेज आपको मैं बताऊँ ना, करे रे ऐसी बातें यार क्यों बताऊँ आपको, इतनी सारी बातें लाल पूछ लिया करे कट्टी कट्टी। अच्छा अगर हम बात करें ना इनकी, ये कोई बहुत ज़्यादा लाउड किस्म का रोमांटिक पेयर नहीं हो सकता दोनों का ना, और मैं किसी को अपने करीब नहीं आने देता, इस तरह के डायलॉग होते हैं। ब्लैक कलर पसंद करना है, और ब्लू जो होता है वो कहता है मैं हर किसी पे एतमाद नहीं करता, और जब एक दूसरे पे एतमाद कर लेते हैं ना तो यही इनकी स्ट्रेंथ बन जाती है, और इनकी लव लैंग्वेज जो है ना इमोशनल जब होके इजहार करते हैं तो बड़ा डीप किस्म की कन्वर्सेशन, एंड दे लाइक के अंदर से कोई बात है तो वो निकाल के करो, कन्वेंशनल किस्म के जुमले नहीं पसंद करते। हैदर भाई ये गाना आपके लिए, मैं तो जा रहा हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले बुधवार जुमरात को। दिस इज आज द डॉग साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच। सर पर्पल कलर के बारे में बताइए शहीना, आप अगली दफा बताएंगे, आप लेट हो गए सर, आप तो बहुत फनी है सच में। अच्छा थैंक यू, मुझे शर्म ही आ गई अभी महमूद, नाइस प्रोग्राम, अल्लाह ब्लेस यू। अभी महमूद ये क्या है, कल आप कुछ और होंगे
1: के लिए उन्होंने क्या?
0: अच्छा इस वक्त के लिए,
1: मौजूदा वक्त के लिए मेरा नाम महमूद है।
0: ओके टेक केयर, बाय बाय, लव यू।

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन। FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101, the sound of new millennium.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101, the sound of new millennium.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

सब माया है, सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, जो तुमने कहा फैज ने जो फरमाया है, सब माया है।

गाहे गाहे दीद की दौलत हाथ आई या एक वो लज्जत नाम है जिसका रुसवाई। बस उसके सिवा तो जो भी सवाब कमाया है सब माया है। आई या एक वो लज्जत नाम है जिसका रुसवाई। बस उसके सिवा तो जो भी सवाब कमाया है।

सब माया है। मालूम हमें सब कैस मियां का किस्सा भी, सब एक से हैं ये रांझा भी ये इंशा भी। फरहाद भी जो एक नहर सी खोद के लाया है, सब माया है।

क्यों दर्द के नामे लिखते लिखते रात करो, जिस साथ समुंदर पार की नार की बात करो, उस नार से कोई एक ने धोखा खाया है, सब माया है। जिस गोरी पर हम एक गजल हर शाम लिखें, तुम जानते हो हम क्यों कर उसका नाम लिखें। दिल उसकी भी चौखट चूम कर वापस आया है, सब माया है। और वो लड़की जो चांद नगर की रानी थी, वो जिसकी अल्लड़ आंखों में हैरानी थी, आज उसने भी पैगाम यही भिजवाया है, सब माया है। जो लोग अभी तक नाम वफा का लेते हैं, वो जान के धोखे खाते हैं, धोखे देते हैं। हां, ठोक बजाकर हमने हुक्म लगाया है, सब माया है। जब देख लिया हर शख्स यहां हर जाई है, इस शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है, और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है, सब माया है। सब माया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, जो तुमने कहा है फैज ने जो फरमाया है, सब माया है। सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है।

आती हैं। हर वो ख्याल जो दर्द की शिद्दत की कैफियत में खुद ही तक पहुंचा देता है, अपने आप से मिलवा देता है, हकीकत का रास्ता दिखला देता है, इस प्रोग्राम में शामिल रहता है। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में कोई ना कोई टॉपिक मेरे और आपके दरमियान गुफ्तगू की वजह बनेगा। हम एक दूसरे से उस टॉपिक के बिहाफ पे बात करेंगे। बात करना बहुत ज़रूरी है, बात करने से सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। चाहे कोई गम हो, चाहे कोई परेशानी हो, चाहे कोई बीमारी हो, कुछ वक्त के लिए ही सही, ऐसा लगता है कि जैसे वो सब कुछ पीछे छूट गया जिसकी वजह से परेशानी है। सो बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक दूसरे से बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में एक ट्रैक शामिल करते हैं। इस ट्रैक के बाद वापस आते हैं और आपसे गुफ्तगू करते हैं, आपसे बातें करते हैं। आप जहां जहां से मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। लाहौर और इसके गिर्दोनवा में सुने जाने वाली आवाज का नाम रहमान अनवर है। इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हुआ करती है एवरी वेंसडे एंड थर्सडे मिडनाइट टिल 2 AM, हर बुध और जुमेरात की रात 12 से लेकर 2 बजे तक हम एक दूसरे से बहुत सी बातें किया करते हैं।

All right. Once again, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 101 की बराह रास्त लाहौर की ट्रांसमिशन और इस वक्त आपकी समातों तक पहुंचने वाली आवाज़ का नाम रहमान अनवर है। ये प्रोग्राम है अधूरी बातें। बाज़ औक़ात कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, जैसे जहन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, जैसे सब कुछ खाली खाली हो जाता है। इससे पहले जब मैं खाली लफ्ज के बारे में सोचा करता था तो इस लफ्ज के मुतालिक गुज़िश्ता मालूमात से बहुत कुछ पता चल जाता था। जो पहले की इन्फॉर्मेशन थी वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तौर मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया करती थी। लेकिन इन दिनों जब बहुत कुछ जहन में चल रहा होता है, जब बहुत कुछ चल रहा है, तो जाने क्यों ऐसा लगता है कि एकदम से सब कुछ खाली हो गया है। वो जो सारे हरूफ लिखे हुए थे जहन के कैनवस पे, वो तमाम न्यूरॉन्स कहाँ हैं, वो तमाम सिग्नल्स कहाँ हैं। अंदर अंदर कोई एकदम से जैसे सब कुछ खाली कर देता। बज़ाहिर पुरसकून कैफियत होती है, लेकिन दिल कहीं ना कहीं बोझल होता है। और फिर बाज़ औक़ात इंसान अल्फाज का सहारा लेकर ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन उससे मिल नहीं पाता। बोलने की कोशिश भी करता है, जबान गंग हो जाया करती है, खामोश, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो चुप, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और भागने की जरूरत भी नहीं है और डरने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कोई अंदर से दिलासा भी दे रहा हो, लेकिन साथ ही साथ चुप रहने का इंदिया भी दे रहा हो। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग बहुत पुरसकून दिखाई देते हैं, बहुत आहिस्ता बोलते हैं, बात सुनते हुए जल्दी नहीं करते, किसी बहस में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, और जब मुश्किल वक्त आता है उस वक्त भी उनके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव होता है, एक अजीब सा सुकून होता है। उन्हें देखकर शायद आप ये कहते हों, ये इंसान बड़ा मजबूत है, इसे कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ये हर सिचुएशन को बहुत मैच्योरली हैंडल कर सकता है। लेकिन उस इंसान के अंदर की कैफियत वो ही महसूस कर सकता है। क्या कभी आपने सोचा है कि वो जो इतना खामोश, इतना पुरसकून नजर आने वाला इंसान है, क्या वो वाकई पुरसकून है भी या नहीं? मुमकिन है, हो सकता है उसके चेहरे पर जो सुकून दिखाई दे रहा हो वो बरसों की तरबियत का नतीजा हो या फिर किसी ट्रॉमा का नतीजा हो। जब वो बोलना चाहता था उसकी आवाज को सल्ब कर दिया गया हो, खामोश करवा दिया गया हो, जब वो कुछ कहना चाहता था ना सुना गया हो। आजकल कोई किसी की कहाँ सुनता है, आजकल सारे के सारे सुनाने में लगे हैं, बताने में लगे हैं। सुनने का हुनर बहुत कम लोगों के पास
रह गया है बाकी। और ऐसे लोग यकीन करें बड़े कीमती लोग होते हैं। हो सकता है वो इंसान जो बड़ा पुरसकून नज़र आ रहा है, बड़ा खामोश नज़र आ रहा है, हर मुश्किल में, हर ऐसे लफ्ज के दौरान जब चीज़ें बेहंगम हो सकती हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ सकती है, शोर बहुत ज़्यादा पैदा हो सकता है, ऐसी सूरत हाल में भी वो खामोश हैं, ऐसी सूरत हाल में भी वो डगमगा नहीं रहा, डर नहीं रहा। हो सकता है उसके अंदर ऐसा शोर, ऐसी गूंज, ऐसी चिल्लाहट, ऐसी चीख मौजूद हो जिसकी आवाज़ कभी किसी दूसरे इंसान तक पहुंची ही ना हो। कभी आपने ऐसा सोचा है? लेकिन कुछ लोग वाकई में पुरसकून भी होते हैं। शायद कुछ लोग सिर्फ अपने तूफान को खामोशी से संभालना सीख लेते हैं, खामोशी से समझना सीख लेते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आज की रात क्या टॉपिक होने वाला है। हो सकता है यही टॉपिक हो जाए, हो सकता है यही सवाल हो जाए कि हर पुरसकून नजर आने वाला इंसान क्या वाकई में पुरसकून हो सकता है? क्या उसे जरूरत नहीं किसी आवाज की, किसी हाथ की, किसी हाथ के लम्स की, नर्म अल्फाज की, मोहब्बत भरे एहसास की? बहरहाल बातें ज्यादा अंदर अंदर वाले इंसान से चल रही होती हैं मेरे, वो जो मेरे अंदर फूंक दिया गया है जिसे। बातें ज्यादा उसको समझने की कोशिश में हो रही होती हैं। बहरहाल ऐसी सूरत हाल में आप मेरे हमसफर बनते हैं, मेरा साथ निभाते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरी उलझन को समझते हैं, मेरे सवाल को सुन लेते हैं। मैं बहुत लकी हूं कि आप सुन लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं क्यों डर लग रहा है तुम कहने से। उसकी वजह यह है कि किसी ने कहा था कि एक हर्फ से, एक लफ्ज से रियाजतें बर्बाद हो जाया करती हैं। सारी उम्र की इबादत गारत हो जाया करती हैं। सो समझ नहीं आ रहा तुम कहूं भी या ना कहूं। वो चीजें बाज़ोकात इंसान के खौफ के लिए होती हैं, इंसान के अपने अंदर के किसी हिस्से को समझने के लिए होती हैं। इंसान के अंदर की बात करेंगे, अपनी ज़ात के अंदर की बात करेंगे और बातें जहां तक भी चली जाएंगी हम उसे ले चलेंगे। जब अंदर की बात करते हैं तो यकीन करें ये वो जगह है जहां बहुत कुछ रहता है लेकिन फिजिकली वो किसी कैमरा में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। इस तस्वीर को कैप्चर नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए कोई एल्गोरिथम नहीं है। ये ऐसा जहान है जहाँ इंसान कभी कभी खुद अपने आप से वो बातें छुपा लेता है जो वो पूरी दुनिया से छुपाता आया होता है। हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। हो सकता है हमारे ऑफिस में कोई ऐसा शख्स हो जो हर वक्त दूसरों को हंसाता रहता हो। हो सकता है आपकी क्लास में कोई ऐसा तालिब इलम हो जो हमेशा कंपोज्ड हो। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा फर्द हो जो हर मसले में सबके साथ खड़ा हो जाता हो, सबको तसल्ली देता हो, सबकी बात सुनता हो, सबके दुख में शरीक होता हो, मगर जब रात को अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता हो
तो शायद पहली मर्तबा उसे इजाज़त मिलती हो कि वो खुद से पूछ सके, मैं आखिर खुद कैसा हूँ, क्या मैं ठीक भी हूँ या सिर्फ ठीक होने का दिखावा कर रहा हूँ। इंसान जब अपने आप से बहुत से सवालात करता है तो कहीं ना कहीं उसके जहन में सिर्फ सवाल चल रहे होते हैं, उनके जवाबात उसके जहन में नहीं आ रहे होते हैं। ये सवाल भी बहुत गहरा है कि क्या मैं ठीक हूँ, रहमान तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना।

बात हमारी ही है, बातें सारी मेरी और तुम्हारी ही हैं। जितनी भी बातें होती हैं उनमें तुम्हारा जिक्र सबसे ज़्यादा होता है। वो सोचें जो तुम्हारे और मेरे जहन के कैनवस पे नक्श होती हैं या फिर चल रही होती हैं, वही बातें तो बाज़ औक़ात ज़बान से अदा हो जाया करती हैं। वही बातें तो मैं करने की कोशिश नहीं करता, मुझसे जसारत हो जाती है, मुझसे निकल जाती है। मैं आपको कुछ तरीकेकार बताना चाहता हूँ जिनके ज़रिए से आप हमें अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। यार आप कुछ भी कह सकते हैं, ये मोर देन वेलकम। आज दिल चाह रहा है आप कुछ भी कहें, कुछ भी अपने आप से सवाल करें, बताएं मुझे आप ठीक तो हैं ना, बताएं कि आप अगर पुरसकून नजर आते हैं तो क्या वाकई में पुरसकून हैं भी या नहीं। ऐसा हो जाता है, दिल जब बहुत सी उलझनों में गिरफ्तार हो, बहुत से प्रॉब्लम्स में, बहुत सारे एहसासात में बयक वक्त सांस ले रहा हो, ऐसी सूरत हाल में खामोशी बहुत बड़े बड़े काम कर जाती है। वो काम जो बाज़ औक़ात बुलंद आवाज से नहीं किए जा सकते, वो खामोशी ट्रांसफर कर देती है। कभी आपने अपनी खामोशी को सुनने की कोशिश की है, अपने अंदर की ऐसी खामोशी जिसके साथ इल्म भी ट्रांसफर हो जाता है। बात करते करते एक छोटा सा पॉज, बिल्कुल इस तरह बात की गहराई को समझाने का सबब बन जाता है, उसकी तालीम पूरी हो जाती है। वो बता देता है कि दूसरे वाले, वो जो सामने है, उसके अंदर क्या है। बोलते बोलते अगर खामोश हो जाए, दूसरी तरफ से आवाज आती है कि क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे आप। लेकिन खामोशी अपनी जबान अदा करती है, अपना किरदार अदा करती है, अपने एहसासात वा करती है, दरवाजे खोल देती है बहुत सारे ऐसे हिस्सों की, ऐसे जगहों की, ऐसे जज्बों की, ऐसे एहसासात की, दरवाजे खोल देती है। फिर उन दरवाजों से गुजरते हुए इंसान बहुत सारे लम्हात को जी लेता है। खामोशी बाज़ औक़ात इख्तलाफात को खत्म करने की वजह भी बन जाती है। अच्छा, ये जो खामोशी होती है ना, ये किस जगह पे खामोश रहना है, किस जगह पे रुक जाना है, किस जगह पे ठहर जाना है, किस सवाल का जवाब नहीं देना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, बहुत मैटर करता है। ये ख्यालात के कैनवस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख्यालात बहुत सारे एक ही वक्त में बहुत सारे एहसासात को लिए आते हैं, बताते हैं, यकीन दिलाते हैं कि हम साथ मौजूद हैं। लेकिन कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ पे ठहर जाना है, कहाँ पे मान लेना है, कहाँ पे बहस नहीं करनी है, कहाँ पे अपना इल्म नहीं झाड़ना है, सवाल का जवाब आ भी रहा हो लेकिन अगर कोई सुनना नहीं चाह रहा तो खामोश हो जाना है, उसको बताकर, उसको समझाकर नहीं रहना है, बात को बाज़ औक़ात दूसरे दिन तक मुलतवी कर देना है, बहुत सारे मसाइल का हल बन जाता है। मैं भी अपने अंदर की खामोशी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या चाहती है, क्या क्या कहना चाहती है, उसके अंदर क्या चल रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है, क्या है जो तंग कर रहा है।

मेरी जिंदगी का कुल असासा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का हासिल भी। मेरा यहाँ पे होना तुम्हारी बदौलत ही है, यहाँ पे रहना, सांस लेना, जैसे खामोशी हर सांस के साथ चलती है, बहुत गहरी खामोशी।

बहुत अजीब सा है कुछ, वो समझ से बालातर है. स्ट्रेंज काइंड ऑफ साइलेंस.

strange kind of silence. मेरी समझ से बालातर है, कहीं किसी जगह पे डीप इनसाइड यू फॉरगॉटन फीलिंग स्लोली वेक्स अप. पता नहीं सुनना चाह भी रहा हूं या नहीं, लेकिन आई वॉन्ट यू टू लिसन. लिसन टू योर सेल्फ. अपने आप की आवाज को सुनूंगा या नहीं मुझे नहीं पता. ये ट्रैक सुनता है, रुकने का दिल नहीं चाह रहा. आवाज को शायद इजाजत मिल गई.

लाहौर और इसके गिर्दोनवा में सुने जाने वाली आवाज का नाम रहमान अनवर है और ये प्रोग्राम है अधूरी बातें। आरजे फरहान खान हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच।

इंसान जो है ना वो बड़ी खूबसूरत शय है, बहुत खूबसूरत क्रिएशन है। चार चार साथ एक पे आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं कि रहमान आप कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या पता कि मैं कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा, मुझे क्या पता कि मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है। मेरा ध्यान तुमसे गुफ्तगू की तरफ है, तुमसे बातों की तरफ है। मैं कोशिश करूंगा कि जो ट्रैक भी मैं प्ले करूं उसके दौरान आपकी कॉल्स और फिर जो हुआ करती हैं वो रिसीव करूं, क्योंकि लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना रहा मैं, मूड नहीं है मेरा, दिल चाह रहा है तुमसे बात करूं। बहरहाल दिल बार बार उसी पुरसकून नजर आने वाले इंसान की तरफ जा रहा। दुनिया की महफिलों के अंदर उसके चर्चे और उसके खुशनुमा होने के चर्चे, बाज़ोकात आपकी खुशनुमाई का अंदाजा आपके लिबास से भी हो जाता है, पहनने के अंदाज से भी हो जाता है, कैरी करने के अंदाज से भी हो जाता है। लेकिन बाज़ोकात अगर आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल ना रखते हों तो आपके बारे में गलत अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है।

बहरहाल वो इंसान जो सामने से पुरसकून नजर आता है, बड़ी अजीब तरह की सलाहियतों का मालिक होता है। अपने अंदर के जख्म के साथ भी मामूल की जिंदगी बड़ी आसानी से गुजार सकता है। आप जरा अंदाजा लगाएं कि सुबह को उठेगा, नहाएगा, कपड़े पहनेगा, काम पर जाएगा, लोगों से मिलेगा, मुस्कुराएगा, जरूरत पड़ने पर बहुत सारे जोक्स भी क्रैक करेगा, है ना, प्रॉब्लम्स भी सुनेगा, बहुत से लोगों को एडवाइस भी देगा, और अगर कोई बहुत डिप्रेशन में है, डीमोटिवेटेड है, आप उसको मोटिवेट भी करेगा। और फिर रात को खामोशी में वही इंसान अपने सामने एक अदालत लगा कर बैठ जाएगा, है ना, अपने जहन के सामने। अब तो इस वक्त कोई ऑडियंस भी नहीं है और कोई परफॉर्मेंस नहीं है, किसी के सामने कुछ भी प्रटेंड नहीं करना, वो सिर्फ अपने साथ है, सिर्फ वो है और उसके अंदर चलने वाली बेशुमार आवाजें हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसान दूसरों से नहीं मांगता, जैसे कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान बयान ही नहीं करता, कुछ आंसू भी तो ऐसे होते हैं जिन्हें आंखों तक आने से पहले ही वापस लौटा दिया जाता है। क्यों क्यों, क्या वजह है? बचपन से शायद यही सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, लेकिन कहानी रुख तब बदलती है जब ये भी ना सिखाया गया हो, बल्कि कुछ भी ना सिखाया गया हो, बताया ही ना गया हो कि रो नहीं, शिकायत मत करो, लोग क्या कहेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। बहरहाल ना भी सिखाया गया हो तब भी आहिस्ता आहिस्ता इंसान इमोशंस को कंट्रोल करना, उन्हें हाइड करना, छुपा लेना सीख लेता है। पता नहीं क्यों यहां पे एक सवाल सा आ गया है कि क्या अपने जज्बात को छुपा लेना मैच्योरिटी है? कभी कभी हम इमोशनल मैच्योरिटी के नाम पर अपनी ही फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर फितरत के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं कि वो महसूस करता है, गुस्सा महसूस करता है, किसी की खामोशी महसूस करता है, गम, खौफ, मोहब्बत, तन्हाई, बेयकीनी, बेपरवाही, बेरुखी, ये सब इमोशंस महसूस करता है। मसला इमोशंस का नहीं, मसला ये है कि हम उन इमोशंस के साथ क्या करते हैं। कुछ लोग हर एहसास को फौरन लफ्ज दे देते हैं और कुछ लोग लफ्ज नहीं दे पाते, अपने ही अंदर दफन कर देते हैं वो तमाम चीजें। फिर वो दफन शुदा एहसासात कभी खामोशी में तब्दील हो जाते हैं, कभी बेवजह की चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है, कभी डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, कुछ समझ नहीं आता कि वो इंसान क्या कर रहा है, कभी सोचों के ओवरफ्लो में बह जाता है, ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ ऐसा जो समझ से बालातर हो, और ऐसे में बाज़ुकात दूसरे जो उसके साथ मौजूद होते हैं घबराहट का शिकार हो जाते हैं, डर जाते हैं, ये जो ऐसा कर रहा है कितनी देर तक ये हमारे साथ या हमारा साथ देगा। अचानक तो मुस्कुराने लगता है, अचानक खुश हो जाता है, अचानक बात को बदल देता है, रवैया ही और एहसास ही बिल्कुल चेंज कर देता है। कभी बहुत खुश होता है, कभी अचानक गुस्से में आ जाता है। शुरू शुरू में तो ऐसी सारी बातें बड़ी क्यूट सी लगती हैं, अच्छी सी लगती हैं, खूबसूरत सी लगती हैं, मगर जब तक आप जान नहीं पाएंगे कि उसके अंदर का प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, उसे सवाल नहीं करेंगे, उसके पीछे एक जो पूरी दास्तान छुपी हुई है उसको
समझने की कोशिश नहीं करेंगे, सुनने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ऐसे इंसान अपनी जबान से अल्फाज अदा नहीं करते, उनके चेहरे से उनकी खामोशी पढ़ी जा सकती है, लेकिन पढ़ने का हुनर आना चाहिए। बाज़ुकात तो चेहरा भी बहुत कुछ छुपा सकता है, आवाज भी बहुत कुछ छुपा सकती है। अल्फाज तो वैसे भी इंसान की सबसे बड़ी पनाहगाह होते हैं। इंसान लफ्ज कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम फाइन, दो लफ्ज होते हैं, मगर दो अल्फाज के अंदर कभी कभी पूरी जिंदगी दफन कर बैठता। आई एम फाइन वाकई में अच्छा ठीक है, ज्यादा बोल रहा हूं, 1:01 हो गया, टाइम का अंदाजा नहीं है। लेकिन कहीं कहीं उलझा हुआ हूं, कहीं किसी एक खास तस्वीर के मुख्तलिफ रुख मेरे सामने आते चले जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि टॉपिक कोई एक नहीं होता, इसलिए मुझे लगता है कि टॉपिक रखना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है आज के प्रोग्राम में, एक कोई ख़ास टॉपिक रखना मुश्किल है। अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप बहुत गौर से सुन रहे हैं, बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं, बहुत खामोशी से सुन रहे हैं और पूरे वजूद के साथ यकजा होकर सुन रहे हैं, तलाश कर लीजिएगा सवाल, जान लीजिएगा, बता दीजिएगा उलझन क्या है। 0421100101 हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर है। आज के प्रोग्राम में मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि नेटवर्क पे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, लाहौर पे क्लिक कर रहे हैं तो आ रही है। नेटवर्क पे आज का प्रोग्राम नहीं होता, आज का जो प्रोग्राम होता है, जो मैं रात की रात का प्रोग्राम, ये लोकल प्रोग्राम होता है, लाहौर और इसके गिर्दो नवा के लोग सुन सकते हैं। लेकिन आप मुझे रेडियो पाकिस्तान के एप्लीकेशन के थ्रू लाहौर पे क्लिक करके मुझे सुन सकते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में। ज़रूरी नहीं है उसके लिए फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना, FM 101। फ्रीक्वेंसी पे सुनना चाहते हैं तो अब तो वैसे 1:02 हो गए हैं, कहीं बहुत दूर हैं तो मोटरवे का सहारा लीजिएगा, यहाँ पे लाहौर में आइएगा या फिर लाहौर के आसपास, फिर फ्रीक्वेंसी पे आप मुझे सुन पाएंगे। ड्राइविंग के दौरान मैं कहता हूँ कि बहुत केयरफुल रहना चाहिए आपको, बहुत ख्याल रखना चाहिए आपको, सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए कि वो जिंदगी की हिफाजत करने की कोशिश करती। एक और ट्रैक शामिल कर रहा हूँ यशल शाहद और मुस्तफ़ा जाहिद की खूबसूरत आवाज़ में। इससे पहले पता नहीं मैंने ये सुना है कि नहीं सुना, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको सुन लेते हैं, मज़ा आएगा सुनने का। ज़्यादा डीप प्रोग्राम तो नहीं हो गया, ज़्यादा गहराई में तो नहीं उतर गया मैं।

सायरा कह रही हैं, काश मैं उसको समझ जाती और प्यार ना करती। चार चार साथ एक के पैगामात। मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम अपना पैगाम और उसे भेज दीजिए 4471. फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल फैन पेज है facebook.com/fm101 लाहौर। आप चाहे तो वहाँ पे जाके हमारी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट्स वहाँ पे भेज सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और सारी बातें मैं ज़रूर बताऊंगा, शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मेरी आईडी है facebook.com/imrahmananwar। सर्च बार में जाकर सिर्फ रहमान अनवर भी लिखेंगे तो मिल जाऊंगा मैं। या फिर उससे भी ज़्यादा आसान तरीका ये है, गूगल पे जाके आपने आरजे रहमान अनवर लिखना है, आपको मिल जाऊंगा मैं।

अभी मुझे एक कॉल आई इंग्लैंड से। थैंक यू वेरी मच फरीहा, आपने मुझे कॉल की। बहुत अरसे के बाद आपने कहा कि इतना पुरसकून और गहरा लहजा सुना है। तो रोका नहीं गया तो मैंने आपको कॉल कर ली। बताएं आपका प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं।

बहरहाल मुझसे कह रही थी कि काफ़ी लंबे अरसे से मैं आपको सुन रही हूँ और हमेशा मैंने लाहौर को ट्यून किया है, लाहौर को सुना है मैंने और उसमें ज़्यादातर मैं रात के प्रोग्राम सुन सकती हूँ। इस तरह से मुझे मेरे मुल्क से मैं जुड़ी हुई महसूस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी ज़बान में कोई बात कर रहा है मुझसे, और आज तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुझसे ही कोई बात कर रहा है, ऐसा लगने की शायद कोई वजह हो सकती है, कोई बात ऐसी ट्रिगर हो सकती है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला एहसास यही हुआ था, अपने जैसे नहीं हैं, यहाँ पे कल्चर भी डिफरेंट है और हर तरह के लोग मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में इंसान कभी कभी बिल्कुल तन्हा हो जाता है रहमान साहब, तो फिर मैं अपने आप को तन्हाई से बचाने के लिए रेडियो सुनती हूँ। लेकिन आज आपसे मैंने ये सुना है कि अपने आप से मुलाकात करें, अपने आप से भी बात की जा सकती है। मैंने वैसे कई बार ट्राई किया है, लेकिन आज मुझे आपकी ये जो खुद कलामी है, आप जो खुद बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, हम सब से बात कर रहे हैं, ये इस तरह महसूस होता है कि जैसे ऐसे बात करनी चाहिए अपने आप से। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज सिखा दिया, तो इस मामले में आज से आप मेरे उस्ताद चलें। थैंक यू वेरी मच। बहरहाल बात कर रहा हूं कि वो जो पुरसकून नजर आने वाला इंसान है, क्या वो वाकई में पुरसकून है, क्या वो वाकई में जो नजर आता है वैसा ही है। एक सेकंड दीजिएगा, कहीं से कोई रिस्क अता हो तो उसको फौरन से अवेल कर लेना चाहिए, उसे तबर्रुक समझकर रिसीव करना चाहिए। वो रिसीव करता हूं फिर आता हूं।

खबर तेरी सुबहों का जिक्र है, तो आखिरी ख्याल है सोने से पेशतर और जागने के बाद मेरी पहली फिक्र है। ये ट्रैक सुनने का इतना दिल चाह रहा है ना, मेरा दिल चाह रहा है इसको सुनते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक और ट्रैक आपके लिए प्ले करेंगे, मज़ा आएगा आपको सुनने में। कोई फरमाइश करना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, आप फरमाइश लिखकर मुझे भेज सकते हैं 4471 पे या फिर फेसबुक पे, कहीं पे भी, जहां जहां पे मैं आपके साथ मौजूद हूँ। डॉक्टर राबिया मेरे साथ मौजूद हैं और कह रही हैं क्या क्या मसला है। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, जमीन पे वापस आया हूँ अभी मैं, पहले आसमान पे था।

बहुत से लोग कहते रहे मन सब गाना सुना है ना, आज सुना दिया मैंने थोड़ा सा। वो इतना अच्छा गा रहा है तो फिर मुझे गाने की क्या जरूरत है ना। वापस आता हूँ, कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना है 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। 1:16 बस 44 मिनट और आपने बियर करना, उसके बाद फिर टाटा।

एवरी वेनसडे एंड थर्सडे मिडनाइट टिल 2 AM मेरी और आपकी मुलाकात होती है। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सी बातें हमने कर ली। खामोशी हमसे क्या कहती है, पुरसकून इंसान क्या वाकई में पुरसकून है या नहीं है।

राइट, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अधूरी बातें अपने मेजबान रहमान अनवर के साथ, और आपकी समातों तक पहुंचने वाली आवाज रहमान अनवर की।

बहरहाल बहुत सी बातें हो गई, आपके मैसेजेस की तरफ आते हैं और आपके पैगामात की तरफ आते हैं, देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। 1:25 अभी मुझे उस्मान ने कॉल की, उस्मान ने कहा रहमान भाई आपने मेरी कॉल क्यों डिस्कनेक्ट कर दी थी, मैंने आपसे तो बस इतना पूछा था कि टॉपिक क्या है। मैंने कहा यार अगर तुमने टॉपिक नहीं सुना तो तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि टॉपिक क्या है, अपने दिल की कोई बात कर लो, हम वो वाली बात कर लेंगे, ज़रूरी है कि तुमने टॉपिक पे बात करनी। फिर उसने बहुत सारी खूबसूरत सी बातें बताई। सो थैंक यू सो मच उस्मान, खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो, जीते रहो, ठीक है। डॉक्टर अलीना मुझे कह रही हैं कि रहमान वो एक बार शेर दोबारा पढ़ दें, ये पहले आपने कभी नहीं पढ़ा, ये बड़ा खूबसूरत शेर है। कौन सा वाला शेर पढ़ा था मैंने? अच्छा मेरी पोस्ट पे जो वो दो शेर हैं दरअसल। शामों में बेहतरी है तेरी गुफ्तगू की शाम, सुबहों में मोतबर तेरी सुबहों का जिक्र है, तो आखिरी ख्याल है सोने से पेशतर और जागने के बाद मेरी पहली फिक्र है। इंसान के जहन में, इंसान के अंदर एक इंसान हमेशा ख्यालात की सूरत में बह रहा होता है, आपके खून की रवानी के साथ। दिल जैसे खून को पंप करता है, धड़कन जैसे धड़कता है दिल, वो धड़कन में कुछ और भी धड़कता है, शायद वो इंसान भी धड़कता हो, शायद वो इंसान भी एहसासात की सूरत में हमारे अंदर कहीं उतरता हो, बहता हो, वो यकीनन बहता है। तो इसलिए जब वो ही वो होता है तो फिर सब कुछ वही लगता है, शाम भी वही लगती है, और सबसे बेहतरीन शाम भी वही लगती है जिसमें उसकी गुफ्तगू होती है शामिल, सबसे खूबसूरत सुबह वो लगती है जब उसका जिक्र शुरू होता है, सोने से पहले भी उसका ही ख्याल जहन में होता है और जागने के बाद भी पहला ख्याल उसका होता है। ये वैसे बड़ी कम अता है, कम लोगों के ऊपर, सॉरी ये अता है, कम लोगों के ऊपर ये अता होती है। इतनी मोहब्बत किसी को दी जाए, इतनी मोहब्बत किसी से मिल जाए, उसके ख्यालों के अंदर सफर शुरू हो जाए, ओ माई गॉड। शामों में बेहतरीन है तेरी गुफ्तगू की शाम, डॉक्टर अलीना गौर से सुनना, शामों में बेहतरीन है तेरी गुफ्तगू की शाम, सुबहों में मोतबर तेरी सुबहों का जिक्र है, ओ माई गॉड। तू आखिरी ख्याल है सोने से पेशतर और जागने के बाद मेरी पहली फिक्र है, ओ माय गॉड। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। याद नहीं आ रहा यार, ये पता नहीं, बड़ा खूबसूरत सा शायर।

बड़े शौक से सुनती थी। अच्छा ठीक है, थी का लफ्ज आ गया है। अरे मैं तो लम्हा मौजूद में हूं ना इस वक्त, मैं तो हाल में हूं, ना मुस्तकबिल करीब में हूं ना मैं माजी में हूं, मैं तो हाल में हूं। और किस हाल में हूं। आज आपने सूट पहना है ना, मैंने आपको देखा था जब आप गेट से अंदर, ओह माय गॉड, गेट से अंदर दाखिल हो रहे थे। ये क्या रैकियां चल रही हैं मेरी। मैं वहाँ पे दूसरे साइड पे कार के अंदर मौजूद थी और मुझे पता था आपने इस वक्त तक आना। ऐसा नहीं करते, रैकियां नहीं करते, बुरी बात होती है बच्चा। बाय द वे, कोई बात नहीं, मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी खुशामदेद कह रहे हैं, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम इस्लाम कल जिससे, हाँ इस्लाम कल के प्रोग्राम में हमारे साथ थे, कह रहे हैं इस्लाम सर सुकून के टॉपिक पर एक शेर है, गम है तो कोई लुत्फ नहीं बिस्तरे गुल पर, जी खुश है तो कांटों पे भी आराम बहुत है। बहुत खूबसूरत इस्लाम, खुश रहो। मरीना बिलाल हमारे साथ मौजूद, अच्छा नहीं, बिलाल कहने से मुझे मना किया था, मरीना ने कहा था मरीना कहना मुझे। मरीना हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। अर्जर रहमान वेलकम मरीना फ्रॉम लाहौर, थैंक यू। अमल हमारे साथ हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं अमल? खैरियत से। गुलाब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम अर्जुन रहमान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच गुलाब। मरीना कह रही हैं रहमान आप आज अफसाना तो पढ़ेंगे ना? नहीं ना, वेरी नाइस बीजीएम अमल कह रही। अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ नहीं है, बस नाइस बीजीएम, ये कोई बात होती है करने वाली। फिरोज आलम जान हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया, शो इज गोइंग ऑसम, प्लीज प्ले सॉन्ग बिस्मिल्ला करा मैं लख वारी। सिंगर नदीम अब्बास, नहीं प्ले कर पाऊंगा सॉरी, ये वाला ट्रैक नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट कोई ट्रैक और आप मुझे कहते तो वो प्ले कर दिया जाता।

मरीना कह रही है, रहमान आप बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, आपका बोलना अच्छा लग रहा है, स्लो ट्यून में भी प्रोग्राम अच्छा लगता है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुनने का दिल चाह रहा है, मैं अभी प्ले कर देता हूँ। गुलाब हमारे साथ हैं, हाउ आर यू सर, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो, ठीक हो ना। फिरोज़ जान आलम कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया से, शो इज़ ऑलवेज गुड, शो इज़ गोइंग ऑसम, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन, अल्लाह ताला आपको कभी कोई गम ना दे, आमीन, अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन, अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए, आमीन। नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ, फ्रॉम मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया। एक तो मदीना मुनव्वरा आप कह देते हैं, सऊदी अरेबिया कह देते हैं, तो दिल एकदम से अजीब सी एक्साइटमेंट में आ जाता है, क्योंकि मेरा पहला ख्याल और शौक़ मेरे दिल में वही है, अगर मैं कहीं ट्रैवल करूं पहली मर्तबा तो बाहर किसी कंट्री में, तो वो मैं करूं। वैसे उस वक्त छोटा बहुत था जब मैं ट्रैवल कर रहा था, उस वक्त मैं अभी पैदा नहीं हुआ था जब मेरे घर वालों ने 3 बार सऊदी अरेबिया का ट्रैवल किया था, ठीक है, उमरा किया था। मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, बहुत उम्दा प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। गुलाब हमारे साथ, वेरी नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। मोहतरम जनाब मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी की तरफ से आपको और आपकी टीम को और आपके सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पाकिस्तान जिंदाबाद, शहर सियालकोट जिंदाबाद, शहर लाहौर जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। मलिक वसीम अवान कह रहे हैं, मोहतरम जनाब रियाज भट्टी साहब लाहौर वाले, मोहतरम जनाब रमज़ान गुजर साहब लाहौर वाले, मोहतरम जनाब गुले यासीन नाज साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं, सदा खुश रहें, आमीन आमीन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।

फिरोज आलम कह रहे हैं, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। राहत फतेह अली खां, ये चला दें जनाब, मैं कोशिश करता हूँ। अभी मन मायल का एक ट्रैक प्ले करते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं, ठीक है? कहाँ है, कहाँ है, यही वाला है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से प्ले करना है यार। ये सुनने का दिल चाह रहा है। कदम जैसे सापा गमा पागा सारे, वो तबले की तिरखट पे तक दिन तनक दिन धनक दिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरेबों का। कदम जैसे सापा गमा पागा सारे, वो तबले की तिरकिट पे तक दिन धनक दिन तनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर उस खड़ी मेरी आवाज सुन के तू जो एक जाविये पे पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था।

स्टाइलिश प्रिंस हमारे साथ हैं, मोहम्मद सुलेमान ब्लोच हमारे साथ हैं, मोहम्मद शफीक हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।

कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें बदल देते हैं, हमें हमारे जवाबात पहुंचा देते हैं, हमें मुतमईन कर देते हैं। सलमान भट्ट साहब आप आए, तशरीफ लाए, आपने कहा कि दिन भर की थकावट और थका हुआ दिमाग आज आपको सुनने के बाद बिल्कुल तरोताज़ा हो गया। थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम करने के लिए, बहुत शुक्रिया। ये बात आपने कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हकनवाज़ की कॉल दो बार कट गई और रावलपिंडी से आप मुझे कॉल कर रहे थे, आपने कहा कि रहमान भाई बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने जिस तरह से प्रोग्राम का आगाज़ किया था और फिर जिस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत मज़ा आ रहा। जर्मनी से हमना अभी कॉल पे थी और बहुत सारी बातें कह रही थी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमना, खुश रहें, आबाद रहें और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ तूफ़ान ऐसे होते हैं जो हमें डबोने के लिए नहीं आते, बल्कि वो हमें ये बताने के लिए आते हैं कि हमारे अंदर कितनी गहराई है। हो सकता है कि आपके अंदर का वो तूफ़ान, वो खामोश तूफ़ान आज आपको बहुत कुछ बता रहा हो, समझा रहा हो। खुद को बुरा मत कहिए, अपने आप से नाराज़ मत हुआ करें और ये हरगिज़ मत समझा करें कि आप कमज़ोर हैं। बस कुछ देर के लिए अपने साथ बैठा करें, अपनी खामोशी को सुना करें, अपने कल्ब से, हम दिल कह देते हैं, दिल भी चलें ठीक है, अपने मन से, अपने कल्ब से पूछा करें, आखिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। जवाब आएगा सुकून, मोहब्बत, माफ़ी, शायद किसी की मौजूदगी, और शायद सिर्फ अपने आप को कबूल करने की एक छोटी सी हसरत। आखिरकार बड़ा लंबा सफ़र है, वो सफ़र जो हम किसी दूसरे इंसान तक करते हैं वो भी लंबा हो सकता है, लेकिन सबसे लंबा सफ़र अपने आप तक होता है। ये जो सुकून है ना, ये बाहर कहीं नहीं मिलता। सुकून उसी दिन से शुरू हो जाता है जब आप अपने अंदर के तूफ़ान से भागना छोड़ देते हैं, जब वो जो अंदर कहीं आंसू चल रहे होते हैं आप शर्मिंदा नहीं होते उससे, अपनी कमज़ोरियों से नफ़रत नहीं करते, अपने माजी से मुसलसल जंग नहीं करते कि क्या हुआ मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ, ऐसे हुआ मेरे साथ, बस करते हैं, बस करते हैं। दिल से पूछें तो सही वो क्या कह रहा है, वो कहेगा हाँ तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अब बस खुद के साथ थोड़ा नर्म हो जाओ, शायद यही असल सुकून है, तूफ़ान का ख़त्म हो जाना। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, तूफ़ान का ख़त्म हो जाना असल सुकून नहीं, बल्कि अपने अंदर एक उस तूफ़ान के साथ साथ एक चिराग का रोशन हो जाना, ये असल सुकून है। तो नेक्स्ट टाइम आपने ये करना है कि अपने अंदर उस इंसान को देखना है, उस पुरसकून इंसान को, हो सकता है वो वाकई पुरसकून हो गया हो, ये भी हो सकता है कि उसने अपने अंदर के तूफान को, अपने अंदर की रोशनी को खामोशी से पा लिया हो, अब उसके चेहरे पर सिर्फ उस तूफान के बाद का ठहराव बाकी रह गया हो। क्योंकि कुछ लोग शोर ख़त्म होने के बाद पुरसकून नहीं होते, वो शोर को समझ लेने के बाद पुरसकून हो जाते हैं। इंसान की सबसे खूबसूरत मंजिल भी यही है, नहीं नहीं खामोश होना नहीं है, पुरसकून होना भी नहीं है, अपने अंदर के शोर को समझ लेना है। बहरहाल यही कुछ बातें हैं, ऐसी ही बातें हैं। फिर भी इस टॉपिक को फिर से अधूरा छोड़े जा रहा हूँ,
पता नहीं कहाँ तक आपको समझ आया होगा, पता नहीं कहाँ तक आपको समझ आया होगा, लेकिन बता दिया मैंने आपको जो भी बताना था, जो भी मेरे दिल का हाल था। 2:02 टाइम जो है प्रोग्राम का ख़त्म हो गया और आपसे इजाज़त लेने का वक्त आन पहुँचा। कोई बात बुरी लगी हो, कुछ ऐसा ज़बान से अदा हो गया हो जो दिल की नागवारी का बायस बना हो, दिल की आज़ारी का बायस बना हो, तो मैं आपसे माजरा चाहता हूँ। दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ़ कर दीजिएगा, बड़े बड़े लोग हैं आप। लेकिन अगर कोई एक बात किसी एक इंसान के लिए भी मशले राह हो गई तो मेरा यहाँ पे आने का, प्रोग्राम करने का, बात करने का मकसद पूरा हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी वेनसडे नाइट मिडनाइट टिल 2 AM और उसके बाद फिर दोबारा से जुमेरात को आपसे मुलाकात होगी। अब ये तय नहीं है कि जुमेरात को 12 से 2 में मुलाकात होगी या 10 से 12 में मुलाकात होगी, क्योंकि कुछ चेंज करने वाले हैं हम, उसमें हम आपको फिर ज़रूर बताएंगे। हो सकता है कि मैं 2 इंटरनेशनल प्रोग्राम करूं, एक 12 से 2 वाला बुध वाला और डॉक्स का जो प्रोग्राम है जो मैं रात वाला 10 से 12 वाला, हो सकता है, अभी कोई डिसाइड नहीं किया। जैसे ही इसकी कंफर्मेशन होती है तो फिर आपको ज़रूर आगाह कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप ये याद रखिए कि बुध को आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। सो वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे, हम जीते जी मसरूफ रहे। कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। यहाँ पे बात ये नहीं है, ये तो फैज अहमद फैज कह रहे हैं। दर्द मिले क्यों बार बार कर, फिर कोई आया दिलेजार? नहीं, कोई नहीं। राहरू होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ईवानों में खाबीदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजर, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के चिराग। गुल करो शमे बढ़ा दो, मैं ओ मीना ओ अयाग, अपने बेखाब केवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। मैं जमी से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। अल्लाह हामिद नासिर।

ज़मीन की सख्ती से ज़िंदगी को जन्म देता है, और फिर जब यही ज़िंदगी किसी बात पर इतराने लगती है तो उसको मौत में बदल लेता है।

और वे इंतहा दरुद सलाम आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर। प्रोग्राम गुंजाइश शौक़ और मुश्तबा हैदर।

पोशाक ने सीखा है दस्तूर मदीने में, हो जाते हैं दुनिया से वो दूर मदीने में।

0: इनका इस तरह का एटीट्यूड होगा तो सारे सारे जो है वो अपनी बेतरफी नहीं बर्दाश्त करते, फिर फैसले से अगर इनके खिलाफ आएंगे तो फिर ये कहेंगे ये जिसको डालते हैं अपने पक्ष आगे, इनको अपने रवैये से अपनी करना चाहिए। रेस्पेक्ट कभी चाहे पाकिस्तान की रियासत है या आज़ाद से हैं या हमारे इस्लाम में पहले उनकी रेस्पेक्ट करें। जब रेस्पेक्ट करेंगे
1: न्याजी साहब एक शायद के ख्वाब देखा है, वो ख्वाब तबीर जो है वो यहाँ पे बयान कर रहे हैं। न्याजी साहब के बच्चे ना आए हैं ना उनकी कोई मुलाकात हुई, और इस सारे मामले में मेरा ख्याल है शायद उनको कोई सोशल मीडिया की कोई खबर शायद पढ़ ली हो, क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ का ज़माना है, तो इसकी वजह से शायद उनको गलत फहमी हो। देखिए इस वक्त बात यह है कि जो खान साहब के बच्चे हैं वो अपना किरदार जीने बगैर ही अदा कर रहे हैं पाकिस्तान। अगर आप पीछे साइंस फोर्स के दिए गए की बात करें और उसमें जिस तरह वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके बाद दूसरे इदारों को दिए गए जो जो कुछ वो कह रहे हैं, वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस माइंड सेट में, वो इस वक्त पाकिस्तान
2: के पाकिस्तान
1: को मिलान कर लेंगे।
2: मुझे पीएमएलएम के माइंड सेट के ऊपर थोड़ी सी शॉक हो रहा है, लाइक आई एम इन अ शॉक राइट नाउ कि असल में लड़ाई यही हो रही है, मुद्दा यही हो रहा है, कंटेंप्ट के नोटिस इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को लग रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो रही, बेटों से बात नहीं कराई जा रही, बेटों से मुलाकात नहीं हो रही, एंड दिस वाज आउट ऑफ अ बिग सरप्राइज। आई हैव टू स्टैंड करेक्टेड और मुझे आपको भी ठीक करना पड़ेगा, ना उनकी मुलाकात हुई है ना उनकी फ़ोन पर बात हुई है, ये मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ हुकूमती मौक़िफ आप कह लीजिए, इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल देखिए ये टी वी चैनल है, इसमें इस तरह की कोई गुमराह कोई प्रोपेगेंडा रस्म नहीं जाते। कब आपने बड़ा राइटली इसको क्लैरिफाई कर दिया कि ये न्याजी साहब की अपनी एक जाती सोच या तखयल था, तो इस तरह की कोई बात नहीं। बाकी इस वक्त जो मसाइल दरपेश है पाकिस्तान के, जो मामला हैं, देखिए फिर माशर से राशि हों, शबाशिफ हों, उनकी जो कोशिश है वो पाकिस्तान को आगे ले जाए। यही वो मुल्क है जब जिसे कहा जा रहा था कि दिवालियाँ होने जा रहा है, और वज़ीर आज़म शेख आशिफ की वज़ारत-ए-उज़्मा के दौर में ही हमने उसको बेहतर होते हुए देखा है। इस सारे मामलों में जब भी बेहतरी आने की कोशिश होती है तो धर्मों की सियासती हो जाती है, मिजाज की सियासती हो जाती है। फिर हालांकि बैठ के बात होनी चाहिए, जो इमरान खान साहब के जो मामला हैं वो ऑलरेडी हुकूमत
2: और जो सारी अफवाहें हैं क्या वो वाकई दम तोड़ देंगी, 9 मई के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर फैसला होगा, जो दूसरे मुकदमात हैं बाकी के ऊपर,
1: के लोगों को अदालत से सजा दे रही है कि जो है दो हफ्ते पहले भी लोगों को सजा हुई है, एक साल का सिलसिला जारी है, वो रुका तो नहीं। अब ये इन पॉइंट इस वक्त ये आ रहा है कि जो मानी है सीबीआई के और वो उनके खिलाफ केस अब शुरू हो रहा है, उसकी बारी भी आ गई है। इसका जो जराए यही कह रहे हैं कि जरा हो गया पीछे जो बाहर बैठे हुए पीटीआई के लोग हैं, खासतौर से उनके जो बच्चे हैं और उनकी साबका अहलिया और उनका जो खानदान है, वो इसी चीज़ को बचाने के लिए, रोकने के लिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान पर, हुकूमत पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है कि इन चीज़ों को आप ना होने। तो इसका लेकिन इन इस प्रेशर को पहले भी गवर्नमेंट ने लिया है, इदारों पर बहुत बहुत संगीन इल्जाम भी लगाए गए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन हुकूमत प्रेशर में नहीं आई। और अब भी ये जो एक फ्री ट्रेड कंपेन थी, लॉबिंग फंड्स को हार करके पाकिस्तान को जो प्रोपेगंडा किया जा रहा था, हुकूमत ने उसका जवाब दिया और उसकी पहुँच के वो जवाब चला। हुकूमत ने बताया कि कितने विजिट हुए, उनको 7 कमरों के सेल में रखा गया है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी दफ़ा दी गई। तो जो एक प्रोपेगंडा इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा था, हुकूमत ने वो प्रोपेगंडा भी अब खत्म करा।
2: बिल्कुल,
1: क्या
2: मैं मुझसे आप दो सवाल आपके सामने रखूँगी, क्या आप तैयार हैं कि आपके बानी का एक और जेल ट्रायल हो? क्योंकि मैं अगर आपको रिसेंट अपडेट दूँ, आज इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत में बानी के खिलाफ जो थाना 12 कहूँ में दर्ज मुकदमा था उसकी समाप्त हुई, और उस हवाले से रिमार्क्स देते हुए जज साहब ने कहा कि इस केस में जेल ट्रायल शुरू हो जाए तो मेरे पास इस वक्त जो केस जो जेरे समाप्त है इसी के अंदर ही ट्रायल शुरू हो सकता है, कि उन्होंने एक इंदिया दिया दिस वॉज हिज रिमार्क्स। तो आप लोग तैयार हैं, कम्फर्टेबल हैं और केस शुरू हो?
3: देखिए, हर एक चीज़ के लिए तैयार है, पर उनका नाम बाली नहीं है, उनका नाम है खान अहमद खान न्यासी। नाम दिया करें, ये बाली क्या होता है कि बाली तो है, वो उनको भी नहीं है, वो बाली भी है, वो हमारे नेशनल हीरो भी है, लेकिन चले उनका नाम है खान अहमद खान न्यासी।
2: यासर महमूद साहब, आपका नाम यासर महमूद है, मैं कभी आपको यासर साहब कह के मुखातिब कर रही हूँ, कभी महमूद साहब कह कर मुखातिब कर रही हूँ, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, ये तो मेरी चॉइस है ना कि मैं खान साहब बोलूँ, मैं बानी बोलूँ, इमरान खान न्याजी बोलूँ, वल्द इकरामुल्ला न्याजी बोलूँ, या मैं कुछ भी बोलूँ, तो ये तो मेरी चॉइस है। अगर आप, हाँ, ये आप डिनाई करते हैं कि आपको बानी कहना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं आपके लिए ऑफिशियली स्टेट टीवी के ऊपर मैं उनको बानी नहीं बोलूँगी। आप कह रहे हैं कि वो बानी नहीं है, आपके हीरो होंगे सर, आप उनको कप्तान कहें, आप उनको स्किपर कहें, दैट इज योर चॉइस सर। हाँ, अच्छा, दिस इज नॉट द डिबेट सर, ये अंडर क्वेश्चन नहीं है। आप तो मुझे लगता है कि ट्रायल के लिए क्या तैयार होंगे, आप तो अभी यही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एंकर ने आपके बानी को कैसे मुखातिब करना है। आर यू रेडी फॉर द ट्रायल सर, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग।
3: पाकिस्तान में देखिए, कानून का एहतराम होता है, कानून का खौफ नहीं होता, और एहतराम उसी सूरत में हो सकता है जब कानून मसादी हो। ये लाजम है कानून मफाद पर मबनी हो, तभी एक सिविलाइज्ड माशरा कायम हो सकता है। हमारे यहाँ देखे, एक तो आम आदमी के लिए कानून है जो ठंडा और बेरहम है, सादी कानून हो तो इन्वेस्टर की आपने बात की थी ना कि इन्वेस्टर आ रहे थे, इन्वेस्टर तभी आएगा जब लोग बात करते हैं इमरान खान के ऊपर ही नहीं कर सकता, जब इतमाद नहीं है तो फिर वो कैसे इन्वेस्टर आएगा कि वो ये सच बोल रहे हैं।
2: पहले सेगमेंट में था, अगर आप अभी तक उसके ऊपर फंसे हुए, आपको मौका मिला था उसके ऊपर जवाब देने का, आपने मिस कर दिया। बी, इसहाक डार के नवासे का केस कम्प्लीटली अलग है एज कम्पेयर टू आपके बानी के। इसहाक डार के नवासे किधर है आपको पता है? किधर है नहीं पता है, उसमें क्या छूट हुई है? ऐसा नहीं कर सकते ना, आप एक गलत तार छेड़ देते हैं अपने आप से उठाने के लिए, क्योंकि हम पीटीआई से कोई सवाल ना करें, मेरे पास पूरा सवाल नामा है। आप दूसरों के ऊपर तब क्वेश्चन करें यासिर महमूद साहब, जब आपके जो स्टार चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम सुन ले आप ही के साथ हो, सुन ले आप ही के स्टार चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब अपना सुबह छोड़ छाड़ करके दूसरों के सूबे में जा रहे हैं, सिंध पहुंचे हुए हैं, और वहां पर गली गली जा करके लोगों को वायलेंस पे उकसा रहे हैं। अब आप इस इसमें बात नहीं करना चाहेंगे, आप कोई भी घिसा पिटा केस उठा करके ले लें जिसका नेशनल सिक्योरिटी से, नेशनल इशू से कोई ताल्लुक नहीं है, और आप उसका मुवाजना करें। आप बात करते हैं कानून अंधा है, कानून बहरा है, अगर आपको इतने ही कानून की परवाह है, बार बार बार बार आप तोहीन अदालत की दरखास्तें कोर्ट में जमा कराते हैं, जब बार बार आपको कोर्ट ने दो दफा आपकी दरखास्तें रिजेक्ट कर दी, मुस्तरद कर दी और कहा वेट फॉर योर टर्न, तो आप वेट नहीं करते अपनी टर्न के लिए, तो वी आई पी ट्रीटमेंट तो आप चाह रहे होते हैं यहाँ से। मैं मुझसे जवाब दे दीजिए कि क्या ये जेल देता है

की ताकत कोई नहीं, मगर यह हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे वो भी है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचें। बाखबर रहें, बा असर रहें। न्यूज़ 9 विद डॉक्टर मारिया।

facilitating.

नुकसान का बायस तो नहीं बनेगा। कभी भी जलती तीली या सिगरेट बुझाए बगैर हर किसी ना फेंके। गैर जिम्मेदार अफराद

that's

दिसंबर 1965 की जंग का तीसरा रोज पाक अफवाज का भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब। छठ सेक्टर में 500 भारतीय फौजी जंगी शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्ला बाबर ने हाजिर तबादले से 30 भारतीय फौजी को जंगी शहीद बना लिया। पाक पकड़िया ने 3 भारतीय तैयारे मार गिराए। एक भारतीय तैयारा मसरूर एयरफील्ड पर उतार लिया गया। बेमिसाल मार्के में अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारों को

RPM.

0: किए गए ज्यादा से ज्यादा तक हारा है 944 और साथ में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। चेयरमैन मिस्त्री मोहसिन अकरी ने दुबई में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम से मुलाकात की। मुलाकात दुबई में आईसीसी अकेडमी में पाकिस्तान वुमेन्स टीम की ट्रेनिंग के मामले में।
1: चेयरमैन केजरी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनसे तफसील बातचीत की। मोहसिन अकरी ने खिलाड़ियों से तैयारियों से बातचीत पूछा। उन्होंने कहा कि तफसील के साथ खेलें और फोकस स्किल पर रखें, मैच टू मैच खेलें और जीत के लिए जाएं। खिलाड़ियों का कहना था कि वो ईडन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और तवक्कात का पूरा उतरेंगे। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के लिए हफ्ते दो रिवेंट का इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम बर्मिंघम पहुंच गई। अब्दुल्ला फजल, अरवान निहाद और इमरान रंधावा ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया।
0: कौमी टीम आज वुडसन क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबेन तीसरा टेस्ट मैच 9 सितंबर से वुडसन ग्राउंड बर्मिंघम में खेला जाएगा। सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसला खुद कर सकता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज के लिए स्कोर तहजीब पर रहेगा दिखाई गया। वर्ल्ड नॉमेट गेम्स 2026 में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। मोहम्मद आसिफ ने मैच रेसलिंग की 90 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता।
1: मोहम्मद आसिफ ने ईरान के खिलाड़ी को शिकस्त देकर 90 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पहला आइटम का अपने नाम किया। पाकिस्तान के खाते मैच रेसलर इकरार नसीम ने 90 किलोग्राम से जायद वेट कैटेगरी के मुकाबले में ईरानी रेसलर को हरा कर कांस्य का तमगा हासिल किया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का कहना है 5 सितंबर को इस्लाम आबाद में आज़ादी फाइट नाइट के नाम से प्रोफेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट कराया जाएगा जिसमें
0: इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए आमिर खान ने कहा कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग का बहुत टैलेंट है जिसे सपोर्ट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बॉक्सिंग के लिए हो रही है। पाकिस्तान में